सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 51 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी।

0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जो सकल जहान में रम रहा है, घट घट वासी है। और ऐसे प्रभु राम को महसूस करने की ही तो आवश्यकता है। विशुद्ध प्रेम, समर्पण, निष्ठा के साथ अपने आराध्य को स्मरण करना, उन्हें भजना और हर सांस में उनका नाम जपना, इस तरह से संसार की जो

सारी बाधाएं हैं उनके स्मरण मात्र से ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि उनका साथ, उनकी कृपा अपने भक्तों पर हो जाए तो फिर क्या चिंता, क्या सोचना, किस बात का तनाव। बस हमें अपने कर्म ही तो करना है, और बिल्कुल चाहे हालात कुछ भी हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर भी है, जो कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ऐसे प्रभु, ऐसे परमपिता भला कैसे दूर हो सकते हैं। तो सब कुछ ठीक होगा, भले ही संसारिक रूपी जो सागर है इसमें नैया अगर डामाडोल हो रही है जीवन की, लेकिन बेड़ा तो पार हो ही जाएगा।

आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी आपने, वे गायक स्वर थे पंडित जसराज जोर साथी, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन और साथियों के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज बाबू जगजीवन राम जी के विचार, आलेख और स्वर डॉक्टर सत्यदेव आजाद।

0: लगता है।
1: ही हमारा जीवन है, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। जागृत रहकर हम विवेकपूर्ण कार्यों एवं विचारों से अदृश्य शक्ति की सहायता लेते हुए उसका परिष्कार कर उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये तभी संभव है जबकि हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित रखें। किंतु हो इसके विपरीत रहा है, हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं। पिछली घटनाएं हमारे मन में बारंबार जागृत होती हैं, जो हमारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती हैं। हम स्मृति को रोक नहीं पाते, साहस बटोर नहीं पाते। इसी का परिणाम है कि हम जीवन में अनेक भावी आशंकाओं से घिरे रहते हैं, अनेक प्रकार के भय हमारे मन में छाए रहते हैं, और अकारण ही हम डरे से सहमे से जीते रहते हैं, खोए रहते हैं अपनी ही कल्पनाओं में। इसके मूल में शायद हमारी स्वयं के प्रति आसक्ति है। इससे छूट पाना तो कठिन कार्य है, छुटकारे का एहसास हो जाना ही हमें बहुत कुछ सुखी बना सकता है, जीवन को तनाव मुक्त कर सकता है। हमारे तनाव का कारण तो स्मृतियां और कल्पनाएं ही हैं, जो हमारे मन को उद्वेलित करती रहती हैं, उसे चंचल बनाती हैं। शरीर तो उनकी अभिव्यक्ति मात्र है, शरीर स्वयं में तो कुछ नहीं कर सकता। आसक्ति की भावना हमें वर्तमान में जीने नहीं देगी। हमारी आंखों से भविष्य की आशंकाएं ओझल नहीं होती थीं, नींद में भी परेशान करती हैं। बस यही है तनाव का मूल कारण। पूरे दिन काम करके भी नहीं लगता कि आज जो कुछ करना था पूरा हो जाएगा या पूरा हो गया। पूरी उम्र जीने के बाद भी नहीं लगता कि हमने सब कुछ कर लिया है। हमें इस परिस्थिति को समझना होगा, इसके बिना हम शरीर से, मन से, विवेक से स्थिर नहीं हो सकते, वर्तमान में जी नहीं सकते। बिना वर्तमान को समझे, बिना स्वस्थ वर्तमान के हमारा भविष्य उज्ज्वल कैसे हो सकता है? वर्तमान के बिना कुछ किए हमें भविष्य में किसका फल मिलेगा? बिना कुछ किए तो हमारा वर्तमान ही व्यर्थ चला जाएगा, जीवन के अर्थ ही नहीं रह जाएंगे। हमारा संकल्प हमें आज से जोड़े रखे, यही है पहली आवश्यकता। हमें कल का भय ना हो, अतीत और अनागत से मुक्त रहने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प और विवेक। इसके लिए माया मोह से दृष्टि हटानी पड़ेगी, कर्म को प्रधानता देनी होगी। हमारी वृत्तियां ही तो हैं जो हमारे अहंकार को जीवित रखती हैं, मन को तरंगित करती हैं, शरीर को अस्थिर करती हैं। शरीर तो मन का घर है, हमारी वृत्तियां शरीर और मन दोनों को चंचल कर देती हैं। यही क्षोभ, स्मृति और कल्पना का जन्मदाता है। इसी कारण वर्तमान से विच्छेद हो जाता है। इसका समाधान कुछ सीमा तक वृत्तियों के परिष्कार से हो सकता है, कर्म को कर्म ही मानकर करने से भी हो सकता है। कर्म को से अहंकार को अलग रखना, अर्थात फल प्राप्ति के भाव से मुक्त रहना, जीवन को तनाव मुक्त कर देगा। कल्पना स्वतंत्र भी हो सकती है और स्मृति के साथ भी जुड़ सकती है। अधिकांशतः दोनों साथ साथ होते हैं। स्मृति के संस्कार कल्पना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन के अनुभव, ज्ञान और लक्ष्य मिलाकर कल्पना को गति देते हैं। संकल्प हमें भावनात्मक शक्ति देता है काम करने की। संतुलित अवस्था में सब ठीक होता है, विवेकहीन होते ही क्रम बदल जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। वर्तमान सुदृढ़ होते ही स्मृति, कल्पना संतुलित व व्यवस्थित हो जाती है।
0: आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम चिंतन बिंदु क्रम में। आज बाबू जगजीवन राम जी के विचार को आपने सुना। स्वर था डॉक्टर सत्यदेव आजाद का। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम

अमजद अली खां का सरोद वादन। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी कृषि वानिकी की सरकारी योजनाओं के लिए अवसर और बरसात के मौसम में कृषि कार्य विषय से संबंधित। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभा कटियार की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS आप सुन सकते हैं दिन में 12:00।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक के स्वर राजेंद्र काचरू का था और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

लीजिए, अब प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ब्रजेंद्र सिंह वर्मा की लिखी हुई नौटंकी दानवीर राजा नृग। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद

युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण धरा का भूषण और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन इस विषय पर चर्चा होगी। काव्यांकुर कार्यक्रम में शशि अग्रवाल प्रस्तुत करेंगी काव्य पाठ। दोपहर 2:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोग दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में बहने जहां चर्चा सुनेंगी जल संरक्षण और वृक्षारोपण में महिलाओं की भूमिका और बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल विषय से संबंधित, तो वहीं आरोग्य भेंट वार्ता क्रम में आज डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी से ली गई दीप्ति शर्मा की भेंट वार्ता में विषय रहेगा माँ का दूध सर्वोत्तम शिशु आहार। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगदीश ब्रजवासी।

0: फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का। ब्रज दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम आवो हवा सुबह 9:25 पर आप सुनिएगा। आज इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश शर्मा जानकारी देंगे मानवीय हस्तक्षेप और नष्ट होती विरासत विषय से संबंधित। सुबह 9 बजे का समय रहेगा हिंदी वार्ताक्रम में। आज पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम इंसानी अस्तित्व और सभ्यता का आधार शुद्ध पानी और पर्यावरण। प्रातः 7:31 पर कार्यक्रम ब्रज माधुरी आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज कवि मुखसों क्रम में कवि गोस्वामी सत्यनारायण मधु का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। साथ ही कुछ ब्रज लोकगीत भी इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से जानकारी मसालों की खेती के बारे में।
1: किसान भाइयों, मसाले वाली सब्जियों की खेती करके आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं, और खास करके वे किसान भाई जिनके पास जोत कम है, खेत अच्छा है, और वहां पर खेती करके आप हल्दी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। विशेष रूप से अगर उनकी मिट्टी बलुई दोमट या दोमट है और जहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था है, क्योंकि बरसात में उस खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, वहीं पर आप हल्दी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर खेत में पानी अधिक समय तक खड़ा रहता है, बहुत अधिक नमी बनी रहती है, तो

0: उसमें राइजोबियम रॉट नामक रोग लगने की संभावना रहती है, जिससे कि हल्दी के कंद सभी खराब हो जाते हैं और उत्पादन घट जाता है। जहां तक हल्दी में पानी देने का सवाल है, सिंचाई जो इसमें की जाती है शीत ऋतु में करीब 15 दिन के अंतर पर करते हैं, लेकिन गर्मियों के समय में 7 दिन के अंतर पर करते हैं और ये जो फसल है 8 से 9 महीने में तैयार हो पाती है। तो काफ़ी लंबे समय की फसल है, लेकिन इससे उत्पादन अच्छा मिलता है और बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। जहाँ तक खेत की तैयारी का सवाल है, तो खेत की तैयारी के समय आपको खाद और उर्वरक विशेष रूप से देने होंगे। 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए और साथ ही 50 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही दे देना है। बुवाई के करीब 2 महीने के बाद 85 किलोग्राम नत्रजन देना होगा और बुवाई के 4 महीने बाद मिट्टी चढ़ाते समय 60 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम ही पोटास को मिट्टी को चढ़ाते समय देना होगा। क्योंकि ये कंद वाली फसल है, इसलिए इसको पोटास की विशेष आवश्यकता पड़ती है। बीज जो है कंद जो बुवाई के लिए इसके उपयोग में लाए जाते हैं, वो एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए करीब 20 क्विंटल कंद लग जाते हैं और इन कंदों को उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। 3% एग्लोल के घोल में करीब आधे घंटे तक बीजों को उपचारित करना चाहिए और इसको उसके बाद निकालने के बाद इसकी बुवाई की जाती है। वैसे इसकी बुवाई का उचित समय 15 जून से 15 जुलाई तक है। आप किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इसकी बुवाई इस समय में कर सकते हैं और इसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसमें पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है और कंद को 2 इंच की गहराई पर बोया जाता है। कंद बोने के बाद पत्तियों से इसे ढक देना चाहिए, जिससे कि इसमें अंकुरण शीघ्र हो और विशेष रूप से यही ध्यान देना चाहिए कि इसके शुरुआत के समय में इसके पौधों को छाया प्रदान की जाए। चाहे वो कैसे भी की जाए, तो छाया प्रदान अगर आप कर सकेंगे तो इससे अच्छा उत्पादन जल्दी लिया जा सकता है। जब तने और पत्तियां इसके पीली पड़ने लगते हैं और करीब ये समय आता है बुवाई के 8 से 9 महीने के बाद। कहने का अर्थ यही है कि ये फसल 8 से 9 महीने की है। जब इसके तने और पत्तियां पीली पड़ने लगें, सूखने लगें, तब इसके कंदों की खुदाई की जाती है और करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ली जा सकती है।
1: आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत डॉक्टर देवेंद्र सरस्व से जानकारी। विषय था मसालों की खेती। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: जवान
1: प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: चलो संग चले हम।
1: कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों आप सबकी नजर

आप अभी सुन रहे थे अशोक कुमार और लीला चिटनिस की आवाज़ों में फिल्म बंधन के इस गीत को। संगीत दिया था पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी ने। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे बेटी फिल्म के गीत को खुर्शीद बानो की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म चौधरी का चांद का ये गीत। शकील बदानी की शब्द रचना को संगीत दिया था संगीतकार रवि कुमार शर्मा ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

योगन फिल्म में ये आवाज़ें थी गीता दत्त और साथियों की, संगीत बुल्लू सी रानी का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत था। फिल्म दीदार से लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद साहब का था। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण आपसे कुछ ही देर में।

0: कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।

0: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगी की पाती के माध्यम से बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलने वाला ही खिलता है। सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाएं नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। युवाओं के लिए खेल आज कैरियर में सपनों को साकार करने का भी माध्यम है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News _ GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच अयोध्या के श्रीराम मंदिर

0: चढ़ावा मामले में विवेचक ने कल जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को जिले में जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सिद्धार्थनगर के लिए 45 लाख पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 6.25 लाख आज पहली जुलाई से हो चुका है और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्तर पे और सिद्धार्थनगर में सभी मंडलों में बड़े व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान होगा।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पाती के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

श्रोता साथियों, आप सब बढ़िया ही होंगे। हम तो राधे रानी तो यही कामना करें हैं कि सुनने वाले श्रोता साथी सब राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें और सारे दुनिया में संसार में खुशहाली रहे। और देखो, आप सब तो देख ही रहे हैं कि अब मौसम तो है ना, पल पल जो है बदल रहे हो है। कभी गर्मी है जाए है और जब बारिश है जाए है तो थोड़ा सा मौसम सुहावनो है जाए। और वैसे वो अब तो समय जो है वो बरसात को ही है, वर्षा ऋतु को तो जो है आगमन है ही चुको है। तो अब बहुत ज़रूरी है, भीषण गर्मी की तपिश से झुलसती भई धरा और सभी पशु पक्षी जो है आकुल व्याकुल है रहते है ना। हम सब है रहते, सब ही तो है रहते, बताओ। तो जैसे ही पानी की बुनिया परी धरा पर धरती पर धीरे धीरे तपिश जो थी वह निकलती गई और ठंडक आती भई। और वैसे सूखी चारों तरफ जो हम आप जो देखे हैं प्रकृति जो है सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखे है, सूखी भई सी, और वह वर्षा ऋतु के आवे के बाद कैसी हरी भरी है जाए है ना। तो आप समझ रहे हैं हम कहाँ कहे वो चाह रहे हैं। अब देखो, या ये जो मौसम अब है तो या में वृक्षारोपण के लिए जो बहुत ही बढ़िया मौसम है, तो कोशिश करें कि बढ़िया बढ़िया जो हैं फूलन के वैसे जैसे आपको जो पसंद होए वृक्ष जरूर लगावें और अपने धरती को हरो भरो बनावें। तो अब अपने ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में देखो, तरह तरह के तो रंग होवे ही होवे हैं है ना। तो कबू जो है आप या कार्यक्रम में ब्रज की माटी तो प्रणाम सुने हैं, तो कबू जो है ब्रज 84 कोस यात्रा को आनंद दे हैं, कबू वार्ता है। तो अपने अब देखो, जब बात है कार्यक्रमन की चल रही है तो देखो आनंद तो सब में ही है ना। अब आप आज हम आपके ताई जो लेके आए हैं कवि मुखोक्रम में काव्य पाठ, और आज हमारे ये कवि हैं गोस्वामी सत्यनारायण मधु। तो फिर चलें, कहाँ बात की दे रही है, सुने जे काव्य पाठ और आनंद लें काव्य रस को।

ऐसो अचंभो न देख्यो कभू, वैसे थोरी चतुराई को जोर।

नचाय के बात बनाय के भौ नचाय के भाज गयो ऐसो माखन चोर, भाज गयो ऐसो माखन चोर। यही कड़ी में आगे बढ़ाम तो भयो नंद।

सखा चकडोर लिए हैं नंद किशोर। हरे हंसे सुनी बातन कू, हरे हंसे सुनी बातन कू, न्यो तो लियो मधुकाल के भोर, लोनी सलोनी आगोनी लीजो, लोनी सलोनी

पे आए, सतरक बैठी है द्वार पे आए, आहट अंगे जो फर के सजूर।

भामिने दामिने बेग चली, भामिने दामिने बेग चली, धसी सूने भौन।

तो साथियों, वाकई में बहुत ही बढ़िया लगो जे काव्य पाठ को सुन के, आनंद ही आनंद आयो। तो देखो भाई, हम सबन को काव्य रस में जो आनंद आयो, तो अब अपने आनंद को और दोगुनो करें और फिर कछु लोकगीत सुन लिए जाए। तो आओ सबसे पहले सुने जे लोकगीत, या को स्वर दे रहे हैं बांके बिहारी शर्मा।

तो साथियों, अभी जो है आप सुन रहे थे मंजू कुंतल की आवाज़ में इस लोकगीत को, और जय लोकगीत के संग ही आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं विश्राम ले है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की

0: छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
1: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और

0: अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy.

0: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आप सुन रहे थे अभी आशा भोसले, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म कुदरत के इस गीत को। गीत को लिखा था शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। और अब साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म सीआईडी के इस माफ़ कीजिएगा आर पार के इस गीत को। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म बंटी और बबली के इस गीत को, और इससे पहले जो आपने गीत सुना था वो था फिल्म सीआईडी से।

अभी आप सुन रहे थे अलीशा चिनोय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ों में फिल्म बंटी और बबली के इस गीत को। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था शंकर एहसान लोय ने। अब आइए सुनते हैं साथियों ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म चरस में इस गीत को। आवाजें थी आशा भोसले और साथियों की, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अभी मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म प्रदीप के इस गीत को। इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित है। महेंद्र कुमार सिंह का लिखा हुआ आलेख है। वचन स्वर है देवराज कृष्ण दीक्षित, राजेश शर्मा के, और विषय है इंसानी अस्तित्व और सभ्यता का आधार शुद्ध पानी और पर्यावरण।

प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जरिए मानव ने विकास के नाम पर आज अपने लिए आपदा मोल ले ली है।

0: विकास के नाम पर आज अपने लिए आपदा मोल ले ली है।
1: अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के नाम पर जल, जंगल, जमीन और आसमान सभी के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहा जाए जो नदियां, तालाब और झील हमें जीवन अमृत प्रदान करते थे, आज उनके प्रदूषक तत्वों ने जहर पैदा कर दिया है।
0: बेहिसाब कृत्रिम उर्वरकों के इस्तेमाल ने धरती की सेहत के साथ साथ मानव की सेहत पर भी बड़ा असर डाला है। इन रसायनों से भूजल और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। इनमें पशु पक्षी व वनस्पतियां भी शामिल हैं।
1: उद्योगों की चिमनियां, मोटर वाहन और अन्य स्रोतों से निकलने वाला धुआं साफ हवा को दूषित करता चला जा रहा है और हम हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिना पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ किए हम सभी को कैसे शुद्ध पानी और हवा मुहैया करा पाएंगे, ये एक विचारणीय मुद्दा है।
0: हजारों साल पहले से इंसान पानी की गुणवत्ता को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। चौथी और पांचवीं सदी के दौरान एक वैज्ञानिक हुए थे हिपोक्रेट्स। इन्हें मॉडर्न मेडिसिन का पिता भी कहा जाता है। उस दौरान इन्होंने पता लगाया कि अशुद्ध जल से ही बीमारियां होती हैं। तब इन्होंने दुनिया के सबसे पुराने वाटर फिल्टर में से एक को विकसित किया था।
1: आज ये चुनौती काफी व्यापक हो गई है। अशुद्ध या दूषित जल और हवा ने जैव विविधता के साथ इंसानी समुदायों के सामने अस्तित्व का खतरा पैदा कर दिया है।
0: पहले जिस निर्मल जल और साफ वातावरण में हमारे पुरखे चिरायु रहते थे, उसी माहौल को हमने दूषित करके अपनी जलवायु और बीमारियों व परेशानियों की वजह बना लिया है।
1: ये अब हमने शेखी बघारने और मुफ्त के अनेकानेक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नाम पर दिया है। पहले तो जल का अपव्यय किया और बचा हुआ जल भी दूषित किया। हमने पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा, हवा को जहरीला बनाया, पेड़ पौधे काट डाले, शहरीकरण के नाम पर कंक्रीटों के जंगल उगा डाले, विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर अत्यधिक कल कारखानों को लगाकर जमीन की भूख और वर्षा की कोख दोनों को ही सुखा डाला।
0: आलम ये है कि दुनिया के 10 में से तीसरे चौथे व्यक्ति को शुद्ध पानी मयस्सर नहीं है। भारत की लगभग 50% से कम आबादी को ही शुद्ध पानी नसीब हो रहा है। धरती पर मौजूद जल स्रोतों का पानी उपयोग के लिहाज से असुरक्षित हो चुका है। इन सब की कीमत भी हम चुका रहे हैं, लेकिन आंख है कि अभी खुलने का नाम नहीं ले रही है।
1: पर्यावरण की इस गंभीर स्थिति और परिस्थिति को रोका जा सके, इसके लिए अदालतों ने हमें कई बार टोका और रोका है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने नदियों में प्रदूषण और उससे लोगों की सेहत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा है कि साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और गरिमा के साथ जीवन जीने, साथ ही शुद्ध जल और पर्यावरण का अधिकार भी इसमें शामिल है।
0: कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य भी है कि हम प्रकृति के घटक वन, नदी, झील और जंगली जानवरों का संरक्षण और सुरक्षा करें।
1: ऐसे में बतौर मौलिक अधिकार इन प्राकृतिक संसाधनों को सभी को मुहैया कराने की चुनौती आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। शुद्ध पर्यावरण और स्वच्छ जल को मौलिक अधिकार बनाने और हर व्यक्ति को उन्हें राज्यों द्वारा सुनिश्चित कराने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी निश्चित तौर पर व्यवस्था और आस्था और उससे भी बढ़कर हम सबके लिए आंखें खोलने वाली हैं।
0: आखिर देश के हर नागरिक को शुद्ध जल और पर्यावरण क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके कारणों को खोजना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उन कारणों का समाधान करना। इंसानी अस्तित्व

0: तत्व एवं मानव सभ्यता के इतिहास को यदि हम देखें तो पाएंगे कि मानव विकास की पटकथा पानी के स्रोतों और नदियों के किनारे ही लिखी गई। और जब पानी के स्रोत या नदियां प्रदूषित हुई तो सभ्यताएं भी इतिहास बनकर रह गई।
1: वर्तमान में हमारे देश की अधिकांश नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। इसे बिना ट्रीटमेंट के पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता है। विश्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पेयजल आपूर्ति का लगभग 85% भाग भूजल से प्राप्त किया जा रहा है। और चिंता की बात ये कि हमारी पेयजल आपूर्ति का ये स्रोत भी अब मानो प्रदूषित हो रहा है या फिर ये खतरे के स्तर तक नीचे जा रहा है। जल का ये प्रदूषण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार का है। जहां जहां प्राकृतिक जल प्रदूषण है वहां सरकारें विभिन्न प्रकार से लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन वर्तमान में मानव निर्मित प्रदूषण देश के सामने एक चुनौती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम भूजल के प्रदूषण के कारणों और उसके समाधान की ओर अपना ध्यान लगाएं।
0: यदि हम प्रदूषण के स्तर की बात करें तो पाएंगे कि वहां भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आज शहरीकरण विकास एवं मानव प्रगति का बहुत बड़ा मापक है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक 30 प्रदूषित शहरों की सूची में 21 भारतीय शहर शामिल हैं। शीर्ष 10 शहरों की सूची में 6 भारतीय हैं। इस सूची में गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में भारत में 16.7 लाख से भी अधिक लोग असमय काल के गाल में समा गए। ये एक विचारणीय स्थिति है।
1: जलवायु, मिट्टी और भूगर्भ जल के प्रदूषित होने का दुष्प्रभाव जहां लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था की सेहत भी खराब हो रही है। हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से हुई असमय मौतों और बीमारियों के कारण वर्ष 2019 में ही भारत को 2.6 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1.4% है, जो एक बड़ी राशि है। एक दूसरे अध्ययन के अनुसार प्रदूषित जल के कारण कृषि आय में 9% और कृषि पैदावार में भी 16% की कमी देखने को मिलती है।
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एवं वायु दोनों ही मानव इतिहास व अस्तित्व के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। इन दोनों की शुद्धता ही जीवन को सुगम और उन्नत बनाती है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि यदि इन दोनों का संतुलन खतरे में पड़ा तो मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट के बादल अवश्य ही छा जाएंगे।
1: इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब समय रहते अपने सामूहिक उत्तरदायित्वों को समझें और प्रकृति के इन अनमोल और विकल्पहीन प्राकृतिक उपादानों को संरक्षित करने की पहल में शामिल हों। तभी हम शुद्ध पानी और स्वच्छ पर्यावरण के अपने मौलिक अधिकारों की पूर्ति कर सकेंगे।

आप सुन रहे थे अभी ये पर्यावरण कार्यक्रम। विषय था इंसानी अस्तित्व और सभ्यता का आधार शुद्ध पानी और पर्यावरण। आलेख महेंद्र कुमार सिंह का था। वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित राजेश शर्मा के थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर 8 से 11 अगस्त तक लगने वाले ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कावड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कावड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कावड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कावड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निःशुल्क ई रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कावड़ यात्रा और मेले की जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाम की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर ADM एवं संयुक्त आयुक्त राज्य कर सहित राज्य कर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाली 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुँच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौद शहर की खतरी गढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी

0: को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। सरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गाँव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौत खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र, लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करें। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में बीबीजी रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ी करण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान है। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, एमपी थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
3: गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो ये हैं कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है लगभग 200 की क्षमता का, साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे विकल्प हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा।
2: तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छेरिया बंदी, बराह माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
3: लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चित्रकूट

0: में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं, शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चित्रकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक नदी तल से उपखनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गांवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा, जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत। जानकारी विषय है मानवीय हस्तक्षेप और नष्ट होती विरासत। जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा।
3: प्रकृति में मानव ने अत्यधिक हस्तक्षेप कर प्रकृति को तहस नहस करके रख दिया है। शहरों, ग्रामीण एवं विभिन्न विकास की योजनाओं के नाम पर पर्वतों, नदी नालों, जंगलों, चट्टानों, गुफाओं को नेस्तानाबूद कर दिया है। मानव ने प्रकृति को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। प्रकृति पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। पहले यह समस्या महानगरों तक सीमित थी, अब महानगरों, शहरों से होती हुई ग्रामीण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों तक पहुंच गई है। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। पहाड़ों से जंगल, लकड़ी, पठारों से फर्शी, पट्टियां, पत्थर निकाले जा रहे हैं। नदियों से रेत, बजरी, मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे वन्य जीवों का जीना दुभर हो गया है। साथ ही जलीय जीवों की भी जान को शामत आ गई है। यहाँ तक पक्षियों का भी जीना मुश्किल होता जा रहा है। पहाड़ सिमट रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, नदियां नालों में एवं नाले नालियों में तब्दील होते जा रहे हैं। कृषि भूमि की चाह ने किसी को नहीं बख्शा। जिधर देखो उधर अतिक्रमणों की बाढ़ आई हुई है। विश्व की तमाम सभ्यताएं एवं संस्कृतियां नदियों, पर्वतों, जंगल के मध्य एवं किनारों पर पल्लवित हुई हैं और आज यही संकट में पड़ गए हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम प्रकृति को अभी भी बचा सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक देशवासी की भागीदारी जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि जिन पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां नाम मात्र की हैं, वहां की प्रकृति एवं पुरा संपदाएं अभी भी सुरक्षित स्थिति में हैं। जंगलों में स्थित शैल चित्र आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहां कोई आता जाता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां वनस्पति, झाड़ियां, वृक्ष अत्यधिक संख्या में हैं, जिसके कारण धूप, हवा, सूर्य की रोशनी, वर्षा से बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां शैल चित्र ग्रामों के पास हैं, वहां हालत बहुत ज्यादा बदतर है। पुरा संपदा क्या है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। श्रोताओं, मेरा निवेदन यह है कि पाठ्यक्रमों में धरोहर नाम से विषय सब्जेक्ट शामिल किया जाना चाहिए। प्राइमरी क्लास से लेकर उच्च शिक्षा तक यह सब्जेक्ट पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। शहरी स्कूलों से लेकर ग्रामीण स्तर के स्कूलों में पुरा संपदा धरोहर विषय पर विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को

देश की धरोहर के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अक्सर हम देखते हैं पुरानी इमारतों, महलों, किलों, खंडरों की दीवारों पर लोगों द्वारा लिखे नाम देखने को मिलते हैं। इन नामों के कारण इनको देखकर शर्म सी महसूस होती है। यह नासमझी का ही कारण है। पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। धरोहरों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो, बच्चों नागरिकों में चेतना का संचार किया जावे, धरोहरें क्या हैं एवं इनकी उपयोगिता क्यों जरूरी है विस्तार से बताया जावे। आज पूरे विश्व में पर्यटन एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में पर्यटन पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध सैकड़ों हजारों मॉन्यूमेंट हैं, जिसके दम पर हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो धरोहरें भी संरक्षित हो पाएंगी। देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही देश का भविष्य है।

आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी ओम प्रकाश शर्मा से। विषय था मानवीय हस्तक्षेप और नष्ट होती विरासत।

0: आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी अच्छी बातों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ की जाए तो निश्चित रूप से हमें जीवन को जीने की एक प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ मित्रों, हमारा आज का विचार है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और दर्शन में कर्म को ही जीवन का आधार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये विचार हमें सिखाता है कि सफलता की पहली सीढ़ी परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म में जुट जाना है। कर्म की प्रधानता का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए भाग्य या दूसरों को दोष ना दें। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं। जैसे एक बीज में वृक्ष बनने की पूरी क्षमता होती है, लेकिन वो वृक्ष तभी बनता है जब उसे सही समय पर बोया जाए, सींचा जाए। ठीक वैसे ही हमारी योग्यता तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कर्म में नहीं बदल देते। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके निरंतर कर्म को प्रधानता दी। यदि हम आज आलस्य का त्याग कर सक्रिय होते हैं तो आने वाला कल स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए फल की प्रतीक्षा में अपना समय व्यर्थ न करें, बल्कि कर्म की शक्ति पर विश्वास रखें, क्योंकि अंत में जीत पुरुषार्थ की ही होती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे।

0: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: श्रोताओं, कल दिनांक 5 जुलाई 2026 को मथुरा के यमुना तट स्थित गौघाट पर सामाजिक संस्था हर्टफुलनेस, ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं नगर निगम मथुरा वृंदावन के संयुक्त तत्वाधान में ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों ने भाग लेकर घाट परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाया।

0: संस्था के वैश्विक मार्गदर्शक श्री कमलेश पटेल उर्फ दाजी ने मथुरा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर सभी को जागरूक करते हुए कहा।
1: देख के ऐसा दुख हो रहा है, ये क्या हो गया है जगह को? गंदगी से भरा हुआ, श्वास भी नहीं ले सकते हैं। गंदगी ही गंदगी सब जगह। सब 21 किलोमीटर का जो परिक्रमा वाला मार्ग है वो देख के रोना आता है। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बताए, कुछ करना चाहिए। यहाँ की पवित्रता उखड़ गई, इसका क्या करोगे आप? कि कैसी नगरी, अब क्या हो गया उसको? इतना गंदगी है, रोना आता है देख के। तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए। ये मथुरा वासियों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की है, समाज की है। अब भगवान में मानो या ना मानो, लेकिन वो वहां पैदा हुए थे, ऐसी पर्सनालिटी, उसको तो साफ रखो। तो आप सब प्रार्थना कीजिए अपने सब सहज मार्ग परिवार के लोग कि वहाँ व्रज वैभव फिर से वापिस लौटे। व्रज की जो रज है उनकी हम सेवा करें और उनको फिर से ईश्वरीय चार्ज से भर देवे। हर कण कण में कृष्ण की रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पवित्रता महसूस होनी चाहिए। सबको संदेश दो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो जाने पहचाने अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, कि चलो मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। अब कई इतनी जगहें हैं जो फॉरेस्ट्स है, उनको साफ करना है, वहाँ नए पौधे लगाने हैं। एक फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा फॉरेस्ट, ये 6 महीने में जितने भी हम पूरे कर सकें सफाई करो। गार्बेज बैग लेके जाओ, उठाओ और वापस अलीगढ़ ले आओ। इधर उधर फेंकना नहीं है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था मुझे लगती है अच्छी होगी। दे कैन प्रोसेस बेटर। और जब ये साफ होगा तब हम नए पौधे लगा सकेंगे। इस मौसम में रेन हार्वेस्टिंग भी करना है। वहाँ पे पानी आता है बह जाता है, आता है बह जाता है, गंदगी और फैलती है, उसको एक जगह पे रखना है। से दुनिया भर के लोग जो आते हैं वहाँ सीख के जाएंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन जो हम चाहते हैं, आध्यात्मिक एवं इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल, सब वहाँ से शुरू होना है। दैट विल स्टार्ट विद अस। थैंक यू।
0: इस कार्यक्रम के दौरान हमने संस्था के कुछ पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि ब्रज की आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं मथुरा में ब्रज वैभव अभियान के समन्वयक श्री निशांत शर्मा।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था द्वारा ब्रज वैभव अभियान के तहत गौ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे 250 से अधिक वॉलंटियर्स आसपास के केंद्रों से आए हुए हैं। मथुरा के साथ साथ आगरा, अलीगढ़, भरतपुर और मेरठ तक से यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स आए हुए हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गौ घाट की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। प्लास्टिक वेस्ट और पन्निया, रैपर, इवन शराब की बोतलें तक हमको यहाँ मिली। और हमने इस घाट पे 8 बजे सुबह सफाई अभियान शुरू किया है। कम से कम 40 से 50 बैग अब तक हम यहाँ पर कूड़ा निकाल चुके हैं और निरंतर ये सफाई अभियान पूरे ब्रज क्षेत्र में हम लोग जारी रखेंगे। हर रविवार को हम अपना 8 बजे से 11 बजे तक अलग अलग जगह पर इस अभियान को कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र के भी हमारे जो भी नागरिक हैं, जो भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ हार्टफुलनेस की तरफ से कि वो आएं और व्रज का वैभव जो खो चुका है, व्रज जो अपनी एक कृष्ण की लीलाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर जगह गंदगी का अंबार है। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि इस व्रज के वैभव को पुनः स्थापित करना है, पुनः लौटाना है। जो श्रद्धालु यहाँ आस्था के लिए आते हैं उनको एक अच्छी अनुभूति हो, सुंदर अनुभूति हो, इसी के अंतर्गत हम ये अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस अभियान से जुड़िए।

0: ये प्रत्येक रविवार 8 बजे से 11 बजे तक हम अलग अलग स्थानों पर यह अभियान कर रहे हैं, जिसका रोस्टर आपको भी हम साझा करेंगे।
1: जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी ये यमुना मैया है, न केवल ये हमारी ब्रज की शोभा है बल्कि हमारी आध्यात्म हमारी संस्कृति से भी ये जुड़ी हुई है। सारे कृष्णकालीन ये प्राचीन घाट हैं, आज यहाँ पर इस तरह की जो गंदगी देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आम जनमानस से क्या अपील करेंगे?
0: सफाई केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें अंतर मन से हमारे अंदर से ये चीज आना चाहिए कि इतना सारा कूड़ा करकट यमुना मैया में आया कहाँ से। एक बरसात में आप मथुरा की स्थिति देख रहे हैं कि पूरा शहर ताल तलैया बन चुका है और जो सारा गंदगी कचड़ा पूरे शहर का सीवर आज हम यमुना मैया के आंचल में देख रहे हैं, तो ये हम स्वयं की भी जिम्मेदारी है। नगर निगम इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये जब तक हमारे अंतर मन से ये चीज नहीं आएगी कि हमें खुद से कूड़ा नहीं डालना है, तब तक शायद हम किसी व्यापक नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये जो विषय है केवल सरकार और सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये विषय है जन जागरूकता का, हमारी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव का। और हमारे साथ हैं इसी संस्था से जुड़े हुए अनुपम अग्रवाल जी।
2: मैं संस्था में उत्तर प्रदेश को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। हमारी संस्था पूरे विश्व के 160 देशों में है और मथुरा का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आध्यात्मिकता के अनुसार भगवान कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था और उनका जन्म स्थान है, और उनके जन्म स्थान को केवल आंतरिक पवित्रता के साथ साथ उसकी भौतिक पवित्रता का होना भी अति आवश्यक है। और उनके जन्म स्थान में हम जब आते हैं या दर्शन करने आते हैं, उनकी अनुभूति करने आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, और उसके बाद जो भी टूरिस्ट जो भी पिलग्रिमेज करने के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये धरती जिस धरती पर कभी भगवान कृष्ण खेले कूदे होंगे और यहाँ पर उन्होंने विचरण किया होगा, उन्होंने यहाँ पे आध्यात्मिकता की एक अलग ऊंचाइयों पर जनमानस को पहुँचाया होगा, उस स्थान को हमें अपवित्र करने की बजाय और पवित्र करके जाना चाहिए, साफ करके जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो भी गंदगी हुई है, क्या जब हम यहाँ से जाते हैं तो क्या हम एक पॉलिथीन का बैग लेकर के यहाँ से कुछ कूड़ा करकट उस पॉलिथीन बैग में यदि भर के ले जाएं, तो जैसा कि मेरी जानकारी में है लगभग लाखों लोगों का रोज यहाँ पे आगमन होता है, और वो लोग यदि एक एक व्यक्ति ये सोचे कि एक केवल 10 किलो की पॉलिथीन भी अगर यहाँ से कूड़ा करकट एक पॉलिथीन में भर के जब यहाँ से बाहर जाए मथुरा से वो ले जाए, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर मथुरा इतना स्वच्छ साफ और एक आनंदमय स्थिति में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक होंगे कि चलो मथुरा चलते हैं, इतना स्वच्छ जगह है, इतना साफ जगह है जहाँ भगवान कृष्ण आए थे और अब हम उस धरती पे उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, यूपी बीटीवी के साथ मिलकर के हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं, और हमें उम्मीद है अभी हमने अभियान की शुरुआत करी है, इसके अंदर हम स्कूल कॉलेजेस अन्य संस्थान यहाँ के बहुत बड़े बड़े जो हमारे गुरु महाराज हैं जो आश्रम्स हैं हम उन लोगों को भी इससे जोड़ेंगे, जनमानस को जोड़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि कोई एक संस्था या कोई एक संस्थान इसको पूरा कर सके। इतना बड़ा मथुरा क्षेत्र है, व्रज क्षेत्र है, इसको यदि हमें पूरे को स्वच्छ करना है तो सबको साथ लेना पड़ेगा।
1: और इसी के साथ हमारे संग संस्था से मथुरा के कोऑर्डिनेटर श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, तो अब हम उनसे बात करते हैं।
3: मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा मथुरा का हार्टफुलनेस कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं सभी के साथ में एक जन समुदाय या मथुरा की जनता के साथ में एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, संकल्प दिलाना चाहूँगा कि आगे से भविष्य में हम अपने ओर पास गंदगी ना फैलने दें, और हमारे ओर पास अगर कोई गंदगी फैलती है पहले तो हम नहीं फैलाएं, अगर कोई फैलाता है तो उसको जागरूक करें और ये संकल्प लें कि हम मथुरा को स्वच्छ बनाएंगे। आगामी 1 साल के अंदर अंदर हम लोग सभी मिलके सबके साथ मिलकर के इस मथुरा नगरी को स्वच्छ बनाएंगे, सबसे उत्तम शहर मथुरा नगरी कहलाएगा आगे के निकट भविष्य में जाकर के 1 साल के अंतर्गत, और ये शहर सभी शहरों से ऊपर होना चाहिए क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और ये हमारे श्रद्धालु भाई करीब करीब साल भर में 8 करोड़ लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं। मैं उन सभी से जनमानस से भी अनुग्रह करना चाहूँगा कि वो लोग भी आकर के यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और अपने साथियों को भी मना करें, कहीं गंदगी दिखती है तो उसको हटाने में सहयोग अवश्य करें।
1: ये अभियान कब से शुरू करा है आपने, कब तक अभी चलेगा ये?
3: ये अभियान अभी 15 दिन पहले से शुरू हुआ था, पहला जो संडे को हुआ था वो ब्रह्मांड घाट पर हुआ था, उसके बाद में पिछला संडे जो हुआ था हमारा यहाँ रमन रेती में हुआ था महावन में, तीसरा यहाँ है। अभी 31 तारीख का संडे आ रहा है अगस्त में, उस समय तक हमारा

0: रोस्टर तैयार है। अगला संडे हम 84 खंबा जाएंगे मावन में। इसी तरह से हमारे पास परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, फिर गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है। आगे के हर संडे का कार्यक्रम हमारे पास चिन्हित है और ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर के और MBDA के साथ मिलकर के हम इस कार्य को बखूबी आगे निभा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आप सभी भाई बहनों का बहुत सहयोग चाहिए और इसके लिए आप सभी लोगों का आमंत्रण है।
1: इसी के साथ हमारे संग पूर्व वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश सिंह सिकरवार जी मौजूद हैं और वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कोऑर्डिनेटर हैं। इस अभियान में बड़े ही उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। व्यापक स्तर पर ये साफ सफाई का अभियान यहाँ चलाया जा रहा है और विशेष रूप से यमुना जी के किनारे अभियान चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर?
2: ये जो अभियान है इसका दूसरा चरण है। पहले चरण में रमण रेती आश्रम पर और पीछे जो सरोवर है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं उसकी सफाई कराई गई थी ये रविवार को, पिछले को। इस रविवार को गऊ घाट पर कंस किले के पीछे पूरे इलाके को लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से दो संस्थाएं काम कर रही हैं। एक तो हमारा गवर्नमेंट लेवल पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, हम लोगों की देखरेख में ये चल रहा है, और दूसरा हमारा जो सहयोग दे रही है प्रमुख संस्था जिसका नाम है हार्टफुलनेस फाउंडेशन, जिसका पिछले दिनों यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो चुका है और इसके दाजी जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो आ चुके हैं। उन्हीं के एक भावना थी, एक विचार था कि मथुरा में बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, वो गलत संदेश लेके जाते हैं अगर उन्होंने गंदगी देखते हैं। तो ये देखा गया कि भाई उन स्थानों पर कम से कम हम लोग सफाई कराएं जहां तीर्थयात्री बहुतायत में आते हैं, जो अच्छा संदेश लेकर के जाएं कि वे स्वच्छ भारत का भी ये संदेश है प्रधानमंत्री जी का, और इसी क्रम में हम लोग स्वच्छ ब्रज की एक कल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये एक एक जगह पर पूरे शहर की सफाई नहीं, ये दरअसल एक प्रतीकात्मक चीज़ होती है जिससे हम लोग एक संदेश देते हैं जिससे आम जनता जुड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पिछले दिनों नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एक सम्मेलन में हार्टफुलनेस और तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन कमिश्नर साहब सभी मौजूद थे, तो एक विचार आया। वो विचार ये था कि अगर एक फैक्ट्री का मालिक यानी वहाँ उद्योगपति थे, अगर स्वयं सफाई करते हैं तो पता चला कि उनके यहाँ 200 जो कर्मचारी काम करते हैं वो खुद ही सफाई में लग जाएंगे। इसलिए ये संदेश दिया गया कि हमें खुद जो है नेतृत्व नहीं करना है बल्कि नेतृत्व का हिस्सा बनना है, खुद सफाई करनी है। तो ये एक संदेश देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें DM साहब ने शुरुआत में पहल की थी और हम सब ने ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है, ये एक हमारा स्लोगन है। इसी के तहत ये स्वच्छता अभियान चल रहा है।
1: हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बोतल है, इस तरह का कचरा बहुत निकल रहा है, तो आम जनमानस के लिए इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: हाँ, देखिए ऐसा है ना कि हम सब लोग जानते हैं कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन होती है वो गलती नहीं है, वो 10 साल बाद भी जमीन के अंदर सेम मिलती है। तो उसका उपयोग करने से पहले हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई इसका हम यूज कम करें, कपड़े के थैले रखें। और देखिए इसी क्रम में एक संस्था है वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति मथुरा की, जिसमें सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, उस लोगों ने मुझे बुलाया तीर्थ विकास परिषद की ओर से, तो मैं वहां गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कपड़े के थैले बनवाए हैं और उन्होंने तमाम सारी संस्थाओं को भेंट किए हैं। कल हमारी संस्थाओं को भेंट किया, जो हमारी तो गवर्नमेंट की संस्था है, वो ये है कि उस थैले पर स्लोगन लिखा हुआ है, हम सब ने ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है। उससे संदेश जाएगा, 10 लोग उस थैले को देखेंगे और यूज भी होगा तो उसको कूड़ेदान में बाद में फेंक दिया जाएगा तो वो गल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हम सब लोगों को प्लास्टिक और पॉलीथिन को अवॉइड करना।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम मथुरा वृंदावन के सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार त्यागी जी भी मौजूद रहे। हमने इस विषय को लेकर उनसे भी बात की। क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर?
3: ये यमुना के किनारे जो ये घाट है गऊ घाट, क्योंकि यहाँ काफ़ी घाट हैं, 20-25 के लगभग घाट हैं मथुरा में, तो उनमें प्रत्येक घाट की सफाई का एक अभियान चलाया गया है। उसी के क्रम में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नेतृत्व में और हार्टफुलनेस संस्था के मुख्य सहयोग से और हमारे नगर निगम की भी टीम इसमें जो है लगी हुई है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और हमारे जो संसाधन हैं, गाड़ियां हैं कूड़े उठाने की हैं, GCB वगैरह, वो भी साथ में लगी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, हम लोग घाटों की सफाई में लगे हुए हैं, तो ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्था के साथ मिलकर के एक दिन जो है घाटों का रखा जाए और घाटों को साफ किया जाए।
1: आज यहाँ से काफी मात्रा में कूड़ा कचरा हटाया गया, वास्तव में कहीं ना कहीं ये जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
3: बिल्कुल, कि ये प्रयास है, अच्छे प्रयास तो होते ही रहने चाहिए समाज में।

0: से एक अच्छा मैसेज जाता है। और कहीं हम कूड़ा ना डालें, कोई रैपर, कोई भी पॉलीथीन बोतल, किसी भी तरह के खाने पीने का जो खाली रैपर होता है वो फेंक देते हैं, या मसाले का है, पॉलीथीन है, फेंक देते हैं। तो हम लोगों के अंदर एक ऐसी जागरूकता आए कि उसको हम अपने पास ही रखें और निर्धारित जो कहीं पे डस्टबिन है उसमें डालें। कहीं डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो उसको अपनी जो गाड़ी है, फोर व्हीलर में है या कहीं पे भी है, टू व्हीलर पे भी आप घूम रहे हैं या पैदल भी घूम रहे हैं, तो एक किसी थैले में या पॉलीथीन में उसको रख लें और जब जहाँ पे उनको डस्टबिन दिखाई दे वहाँ पर डाल लें। तो एक तरह से ये होना चाहिए कि हम समाज में सफाई के लिए योगदान दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कूड़ा फैलाने में योगदान दे रहे हैं। होता यही है कि हम कहीं खाते हैं या कोई पानी पीते हैं तो वहीं पर फेंक देते हैं और वो फिर फैलता जाता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम लोग ये कोशिश करें कि कुछ भी हम खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी किसी रूप में कोई कागज़, रैपर या खाली बोतल या किसी तरह की चीज़ हम सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंकेंगे, केवल उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। डस्टबिन नहीं मिलेगा तो उसको रख करके ले जाएंगे अपने कहीं पे, घर पे या कहीं पे डस्टबिन होगा उसमें डालेंगे।
1: ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके निस्तारण के लिए या कहीं इसके किसी प्रकार के पुनर्चक्रण के लिए क्या नगर निगम की कोई कार्य योजना है?
0: जी जी, नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा जो ठोस अपशिष्ट है, ठोस कूड़ा आता है, उसी में जो प्लास्टिक है, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको बीन करके बेंच वगैरह बनाई जा रही हैं। एक कंपनी से निगम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कंपनी उसमें से प्लास्टिक वगैरह का छांट करके उससे बेंच बना रही हैं, टी गार्ड बना रही हैं, जो गमले हैं वो बना रही हैं। अभी 1000 के लगभग जो है हमारे गमले बन चुके हैं और 500 के लगभग हमारे टी गार्ड बन चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा, और 500 के लगभग हमारी जो है बेंचें बन चुकी हैं जो हम जगह जगह स्थानों पर मथुरा नगर निगम के अंतर्गत लगा रहे हैं। तो एक तरह से कूड़े को ही पुनर्प्रयोग करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे मैसेज अच्छा जा रहा है।

वास्तव में श्रोताओं, साफ सफाई, वृक्षारोपण, ये सब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। और बात जब पर्यावरण की हो रही है तो एक पहलू तो है इसका साफ सफाई तो है ही, साथ ही में दूसरा पहलू है पर्यावरण संरक्षण, यानी वृक्षारोपण करना। क्योंकि हमारी धरती पर जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी ही ये धरती सुंदर होगी और उतना ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुलाई माह में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है और इस माह में मनाए जाने के पीछे भी एक कारण ये है क्योंकि इस समय मानसून आ जाते हैं, बारिश होती है और ऐसे मौसम में वृक्षारोपण करना काफ़ी उपयुक्त रहता है क्योंकि जो भी आप पौधा लगाते हैं उसकी वृद्धि करने की, उसके पनपने की संभावनाएं अक्सर इस मौसम में रहती हैं। तो इस मानसून के मौसम का हम लोग क्यों ना लाभ उठाएं और प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, और न केवल पौधा ही लगाएं बल्कि उसकी उचित देखभाल भी करें क्योंकि वृक्ष हमारी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ये हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी तथा जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आज बढ़ते हुए प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और इसको केवल वृक्षारोपण करके ही सही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। और अधिक वृक्ष होने से तापमान भी नियंत्रित रहता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी वृक्षारोपण करके कम किया जा सकता है। विद्यालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित वृक्षारोपण करके अभियान चलाकर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। और इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु में ही पौधे लगाएं क्योंकि इस समय आपका पौधा अच्छी तरह से पनप सकता है, उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी। स्थानीय जलवायु के अनुसार आप उपयुक्त देशी प्रजातियों के

0: लगा सकते हैं। पौधे लगाने के बाद नियमित रूप से उसमें पानी दें, उसमें खाद आदि दें और उसकी देखभाल करें। और ये बात का ध्यान रखें कि बिना योजना के किसी भी स्थान पर कोई पौधा ना लगाएं, पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना नहीं छोड़ें और अनावश्यक रूप से पेड़ की शाखाएं या पत्तियों को नहीं काटें। पौधों के आसपास प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा या रासायनिक अपशिष्ट नहीं फेंकें। इन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो पौधा है वो फले फूले और एक बड़े वृक्ष के रूप में तब्दील हो। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अब आज की कुछ खास खबरों की। आज की खबरों में है कि जनपद के परिषदीय स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कायाकल्प योजना के तहत जनपद के 3 अलग अलग सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा और सुविधा को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए यूपी सिडको के कार्यालय अधिशासी अभियंता की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए बीते 19 मई को ई टेंडर अपलोड किए गए थे। और इसी के साथ एक और खबर है, प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राएं अब खेल कूद में भी चमकेंगी। विभिन्न खेलों में उनको बेहतर करने के लिए जिला व राज्य स्तर पर अलग अलग कैंप का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर 22 खेलों के लिए अलग अलग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित छात्राएं विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। और बात कर लेते हैं अब आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि यानी आज की तिथि 6 जुलाई इतिहास के झरोखों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1885 में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और आज ही के दिन 2006 में विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया था। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की थी, संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत इस फिल्म से है।

अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सी गज़ल फिल्म उमराव जान से थी। आवाज़ थी आशा भोसले की, गज़लकार थे जनाब शहरयार और संगीत खयाम साहब का था। साथियों आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

तेरे घर के सामने। आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतकार थे शायर जन्नब हसरत जयपुरी साहब और संगीत ST बनमन का था। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गजल फिल्म में अभी आप सुन रहे थे ये गजल साहिल लुधियानवी ने शब्दों में ढाला था और संगीत मदन मोहन ने दिया था। साथियों इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को। फिल्म थी त्रिशूल और गीत, अगला गीत आइए सुनते हैं इस फिल्म से।

साथियों, आप सुन रहे थे अभी आशा भोसले, हेमलता और साथियों की आवाज़ में फिल्म राजमहल के इस गीत को। रेडियो FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। तो साथियों, ये फिल्म संगीत जारी ही है, कहीं मत जाइएगा। लीजिए, ये हाजिर है ये गीत।

आपने सुना अभी एरेन फिल्म के गीत को सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत को लिखा था प्रणव भारद्वाज ने।

0: अभी आपने सुना
1: फिल्म रेस के इस गीत को
0: बैन दयाल और शलमली खुलगड़े की आवाज़ में। आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी राहुल फिल्म के गीत को, अलका याग्निक और महालक्ष्मी की आवाज़ों में संगीत दिया था अनु मलिक ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

रोटी की कीमत। इस फिल्म के गीत को अभी आपने सुना उषा उत्थुप की आवाज़ में। इंदिवर के लिखे इन बोलों को धन से संवारा था बप्पी लहरी ने।

मीत ब्रोस अंजन और कनिका कपूर की आवाज़ में आपने सुना रागनी MMS2 फिल्म का ये गीत। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है फोन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी,
3: आदरणीय दीक्षित सर को हमारा सब प्रेम भरा नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
3: सर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ साहब, गांव उस पार से।
2: स्वागत यादराम जी।
3: और सर, आप कैसे, आकाशवाणी टीम कैसी है सर हमारी?
2: सभी लोग अच्छे हैं, हम तो, आप कैसे हैं?
3: हाँ ठीक है सर, आपकी दुआएं, कन्हैया जी की कृपा है।
2: और क्या कर रहे हैं आजकल?
3: आजकल तो सर अपने घर पर ही हैं, आप रिटायर्ड आदमी हैं, घर ही बैठे।
2: और खेतों में क्या चल रहा है?
3: खेतों में साहब अब जो है धान की पौध लगेगी सर।
2: जी जी, मानसून का आगमन हो चुका है।
3: जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
3: फरमाइश रहेगी हमारी, फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी
2: जी।
3: गाने के बोल है बबुआ खाता जाए एक पान, पान में हमारे भरी है जान।
2: जी जी
3: सर, मैं आपने साथी का नाम ले सकते हैं सर?
2: जी जी,
3: चौधरी महेंद्र सिंह जी है सर हमारे।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: पंचरंगी गीतों का खूबसूरत गुलदस्ता प्रस्तुत करता आदरणीय दीक्षित साहब को सादर सा प्रेम प्यार है नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद आभार। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आदरणीय दीक्षित जी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं प्रजापति जी?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है, बाकी बिहारी कृपा है, और घर में रहते हुए आकाशवाणी रेडियो से जुड़े रहते हैं, और जो रेडियो सुनना आप लोगों से वार्तालाप करना ऐसे में मस्त रहना गीत संगीत में, यही हमारे स्वस्थ रहने का एक अच्छा माध्यम बना हुआ है। और घर में सेवानिवृत्ति के पश्चात जब रेडियो को अपना मैंने साथी बना लिया है तो ये अच्छा साथ निभाता है और हमारा बहुत अच्छा समय बीतता है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। अब तो मौसम सुहाना हो गया है।
1: सुहाना तो हुआ है, तापमान गिर गया है, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है, पसीने से तरबतर रहते हैं, उमस भरी गर्मी ज्यादा परेशान करती है।
0: जी जी जी बताइए, आज फरमाइश क्या रहेगी प्रजापति जी आपकी?
1: ये बारिश का महीना आषाढ़ का है और अब कहीं कहीं इधर उधर रिमझिम फुहार पड़ने लगी है, और ऐसे वातावरण में एक गीत मुझे याद आ रहा है, फिल्म का नाम

0: है 1942 अ लव स्टोरी
1: जी,
0: और गीत के बोल हैं रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम। ये मौसम थोड़ा भीगा भीगा अवश्य है, उमस भरी गर्मी लिए हुए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ प्रसारण हेतु।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: दीक्षित जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंडौली से बोल रहा हूँ दीक्षित जी।
0: लवानिया साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हालचाल हैं?
1: बिल्कुल सर, हालचाल ठीक है। थोड़ी सी तबीयत आंखों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो ठीक है
0: चलिए अपना ध्यान रखिए।
1: जी। बिल्कुल सर,
0: फरमाइश बता दीजिए, क्या सुनवाएं आपको?
1: तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद लवानिया साहब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: दीपचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अग्रवाल साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद आपका कॉल लग पाया।
1: हाँ सर, बीच में कई बार लगाओ तो लगता नहीं है, या फिर और भी कोई समस्या जाती है
0: जी,
1: जिसके कारण आपकी और हमारी बात नहीं हो पाती।
0: ये लाइन व्यस्त रहती है ना इस समय।
1: जी, सर अभी भी 3-4 बार रिंग गई लेकिन पता नहीं कहाँ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता।
0: और बताइए, क्या हाल चाल है आपके परिवार
1: बस
0: में? सब
1: बढ़िया
0: ठीक
1: सर,
0: हैं?
1: मौसम तो हमारे यहाँ इतना बढ़िया ठंडा हो गया है।
0: चलिए, खुशनुमा मौसम का आनंद लीजिए।
1: जी, 3-4 दिन से सर लगातार बारिश हो रही है।
0: अच्छी बात है।
1: और आपके यहाँ का क्या हाल है सर?
0: हमारे यहाँ भी बारिश शुरू होना बाकी है, मानसून
1: जी
0: का आगमन हो चुका है।
1: जी बढ़िया बढ़िया सर।
0: जी बताइए,
1: जी
0: आज क्या फरमाइश रहेगी अग्रवाल साहब?
1: सर, मुझे मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में फिर भाई सावन, भीगा भीगा प्यार का सबब बता दे गोरी, जाना है कहाँ।
0: सुनवाते हैं अग्रवाल साहब आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: सर, श्री नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, ग्राम नगर विजयी राया से आपसे बात कर रहा हूँ। सर,
1: नेत्रपाल जी, कैसे हाल चाल हैं आपके?
0: स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप और आपकी टीम कैसी? सर,
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से।
0: सबकी दुआ से सभी हो सही होंगे। हम भी यही कहते हैं, परमपिता में सबके कृपा रखे,
1: जी
0: सब सही रहे।
1: जी जी आपके परिवार में सब ठीक?
0: सब सही सही है सब।
1: बताइए, आज फरमाइश क्या है, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: एक परदेसी मेरा दिल गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया।
1: लीजिए, सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राधे राधे।
1: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के स्वास्थ्य, हमारे परिवार, पशुओं और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। बातें तो जारी रहेंगी, उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, हर वर्ष 6 जुलाई को यानी आज विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी हमें अनेक गंभीर रोगों से बचा सकती है। तो आइए जागरूक की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे जूनोसिस क्या है, जूनोसिस दिवस की। तो सबसे पहले जानते हैं यह है क्या। जूनोसिस ऐसे संक्रामक रोगों को कहा जाता है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवियों के कारण हो सकते हैं। संक्रमित पशु के सीधे संपर्क उसके दूध या मांस, उसके मल मूत्र, कीटों के काटने या दूषित भोजन एवं पानी के माध्यम से भी ये रोग फैल सकते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महान वैज्ञानिक ने पहली बार रेविस के टीके का सफल प्रयोग किया था। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और आज भी लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक है, यानी कि जिंदगी को बख्शने में सहायक है, जिंदगी को चलाने में सहायक है।

श्रोताओं, हमारे आसपास अनेक पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी और अन्य जीव। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन यदि उनकी सही देखभाल ना हो या वे संक्रमित हों तो वे अनजाने में बीमारी फैलाने का कारण भी बन सकते हैं। अब जानते हैं कुछ प्रमुख जेनेटिक रोगों के बारे में। सबसे पहले है रेविज। यह संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या अन्य स्तनधारी पशु के काटने से फैलता है। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह अत्यंत गंभीर हो सकता है। इसलिए किसी भी पशु के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और बिना देर किए चिकित्सक से

संपर्क करना चाहिए। दूसरा रोग है ब्रुसेलोसिस। यह प्रायः संक्रमित पशुओं या बिना उबाले दूध के सेवन से फैल सकता है, इसलिए हमेशा उबला या पाश्चरीकृत दूध ही उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू और कुछ अन्य रोग भी पशुओं में मनुष्यों में फैल सकते हैं। इनसे बचाव का सबसे अच्छा उपाय है स्वच्छता, सावधानी और समय पर चिकित्सा।

श्रोताओ, रोग होने पर इलाज करना अच्छी बात है, लेकिन रोग होने ही ना देना उससे भी बेहतर है। यही संदेश विश्व जिनोसिस दिवस हमें देता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि जिनोसिस से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय बहुत प्रभावी हैं। हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, पशुओं के रहने के स्थान की साफ सफाई रखें, पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराएं, बीमार पशु की देखभाल करते समय सावधानी बरतें।

बिना उबला दूध या अधपका मांस खाने से बचें। किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखिए, स्वस्थ पशु ही स्वस्थ समाज की पहचान है।

सरकार और स्वास्थ्य विभाग क्या प्रयास कर रहे हैं, आम नागरिक किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी भूमिका निभाएंगे तो इस तरह के रोगों से छुटकारा तो मिल ही सकता है और ये इन्हें होने से पहले भी बचाया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ये रोग हो ही ना। अपने पशुओं की देखभाल संक्रमित होने पर अच्छे से कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, रोग होने पर इलाज करना अच्छी बात है, लेकिन रोग होने ही ना देना उससे भी बेहतर है। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम के पहले अब विराम देने की हमें दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। कार्यक्रम में मैं हूं दुर्गेश भास्कर आप सबके साथ। कार्यक्रम में पहला संदेश हमें लिख भेजा है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शंभू अर्णव और दुर्गेश्वरी ने। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं गमरी जमशेदपुर से, बिपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार, कुमार आर्य, दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमाने जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति का संदेश मिला। सेक्टर 67 महोली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जसवीर, डॉक्टर अमनदीप कालका से हमें संदेश लिख रहे हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर महाराष्ट्र से। आप हैं कालानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक, अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता और प्रतीक का संदेश मिला। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला का संदेश। उत्तम कुमार भगत, श्वेता की, सुताशु, अर्णव, सत्यम, आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। कुमार गली से भी जुड़ चुके हैं हमसे श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पुनावली पुणे से हमें लिख रहे हैं संदेश अजय सोनवर ने, करिश्मा, अविका और विशाखा। आप हैं सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, जेल रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद बुहारुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन, गुड़िया, तेलंगाना, भोंगिर से। अगले संदेश करता है तनौली तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी और आयान। आप हैं क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम, रजत, मनीष, बेबी गरिमा, बांडी, बाली, फज्जिका, पंजाब से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर, राही, महराज, जहां आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। अगले संदेश करता है छत्तीसगढ़ पथरिया बहरेबा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश, नेहा और बान्या सिंगरोल। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं अफटानी चौक नारायण स्टेज से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, राहुल मनवर, सरला विशाल, रोशनी, बेबी प्रियांशी।

शाहू नगर यवतमाल से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम में, ये आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का पहला गीत, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है परिचय, शब्द रचना गुलजार की, और इस गीत को धुन से संवारा है आरडी बर्मन ने।

इस गीत की फरमाइश लिख भेजी थी फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमद नगर से जुनेद सबिया मिखाइल और जैनेब का संदेश मिला। इसी गीत को सुनना चाहा था बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव अनिता और रमेशराव गौठोड़े ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी झज्जर हरियाणा बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक भाटिया ने। कार्यक्रम में अगला संदेश मिला है बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र प्रमिला उमेश छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार डोली राधिका प्रभा देवी तामुरिया अलकबीर बलौद छत्तीसगढ़ से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल मोहम्मद अफजल अकमल नसीबा प्रमीड। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी शर्मा सौरभ साइना और निवान शर्मा। अगला संदेश हमें मिला है गंज टुंडबारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जहिरा मोहम्मद अयान उस्मान सुभाष योगी सुशील बब्बू डब्बू राजू मिगलानी बबीता कृष्णा कॉलोनी हांसी से। बिहार से हमें संदेश लिख रहे हैं नवीन ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल कामेश्वर प्रदीप कुमार राजबहादुर शंभू रजनी सागर और जयबीरू। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लक्की तनिया का संदेश मिला। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण का संदेश मिला। तेलंगाना से हमें लिख रहे हैं मोहम्मद अजमत

सलमा फिरदौस, मुनीरू निसा। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर सार्थक अलौकिक। आप हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, नीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश, सुरेशा, शुभम और अक्षय का संदेश मिला। फारूक फूलवाले, सैयद खैल मुदीन भाई, एमडी सयानीन, अजीज भाई, मतीन भाई, सैक चांद निजामाबाद से अगले संदेश करता है। कौली नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाल, दयानंद ओमकार और साई गायबकर। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीवा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म समझौता से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की, शब्द रचना वर्मा मलिक की है और इस गीत को धुन से बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया ने। इसी गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश, निवृत्ति संजय ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षक और जयश्री ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी आप हैं। शिव मंदिर हरिनगर जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से गौरव कुमार, गौर गरिमा, आहूजा हर्ष, भाई मुकेश, श्री गणेश, अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्हार, अविका सोनू कुम्हार, अर्चना। कोयते बस्ती पनावली से हमें संदेश लिख भेजा है अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, सैशा ने। अगला संदेश हमें लिख भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, पद्मा टॉकीज, नेपानगर एमपी से प्रकाश जैन, नादेड़ से, लातुर से हमें संदेश लिखा है संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन ने। सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता, पप्पू, अनीता आरजू, हशमुख, शक्ति, संजीव बट्टी और इनका पूरा खुशदिल परिवार। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप हैं सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल दिशानी और निमित, मोहम्मद खाजा रिजवुद्दीन, मोहम्मद खाजा फसीउद्दीन और आयशा तवस्सुम जुवेरिया जिला वरंगल से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, कोमल सेन, तोषण, विनायक सोंगा, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश करता है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीसान शाहनवाज और पूरा सिद्दीकी परिवार, मंगेश इंग्ले, संध्या स्वराज, विराज छत्रपति, सांभाजी नगर से। आप हैं बंडीखेड़ा पंजाब से मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले की आवाज़ है, फिल्म का नाम है उमराव जान। इस गीत को संगीत से सवारा है खय्यम ने।

इस गीत को सुनना चाहा था राजनगर कांति निकेतन से, रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि, कोमल, शारदा कुमेश्वर और दादा ठाकुर ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तन्वी और अंकित ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा माहेश्वरी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। आप हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, अर्जुन गब्भाड़कर और टुक टुक। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल। ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल का संदेश मिला। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है रज्जक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान राजस्थान से। अगले संदेश करता है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा, साइमा, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। अगला संदेश हमें मिला है तेलंगाना से चट्टपल से कस्तूरी, रामेहू, बमा देवी, पृथ्वी और नारायणा। मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू, निशा, सबिस्ता, पलक, लुबना और यस मंसूरी। बबरी बाजार चंदौरी से विजय सरोज, गमरिया जमशेदपुर से रोहन आर्य, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू देवंती चकिया, बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन का संदेश मिला। मुरादाबाद

से हमें संदेश लिख रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं महाराष्ट्र से, रूपे संगई, महेश संगई, प्रकेश, प्रतेश और पूरा संगई परिवार। कार्यक्रम में अगला संदेश मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख, मूसा भाई मध्य प्रदेश से। हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश, वसुंधरा, संगाली से। अगले संदेश करता है राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रवि, गौरव, मित्रगण, छपरा, दलदली बाजार से संजय, संगीता, सर्वजीत, सुधांशु कुमार गुप्ता। मंचला रेडियो लिसनर क्लब अकोला से के शरद पाचपोर और शोभा पाचपोर, बेबी बेदेही और बिहान बाबू का संदेश मिला। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सावन भादो। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और इस गीत को संगीत से संवारा है सोनिक ओमी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था मोताला महाराष्ट्र से कुमकुम विजय और रतन माला सुरलकर ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिखा है तलैया से, अभय कुमार, सनातनी सिवानी, रिया जिया, टूसी, मुन्नी देवी, जय प्रकाश, बसंतलाल, हीरा मोती और पन्नालाल।

छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती नंदकिशोर महाराज हरिराम भाई दशरथ, भगवती भाभी का अजलकरण और समस्त बुंदेलखंडी निवासी। बुलंदशहर से सईद अब्बासी, निगत सवनाज अब्बासी, सरफराज फरदीन सुहान, अरजान आवान और पूरा अब्बासी परिवार।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत बात और SMS को संपन्न करने की दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं जगदीश ब्रजभाषी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किससे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया,
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज के कलाकार हैं जगदीश ब्रजवासी, और आइए अब आपको सुनवा दे।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का. आज के कलाकार हैं जगदीश ब्रजवासी. और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम ब्रज लोकगीत, जगदीश ब्रजवासी के ही स्वर में.

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे जगदीश ब्रजवासी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 1 बजने को है थोड़ी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 108

0: पैसा टंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जल संरक्षण और वृक्षारोपण में महिलाओं की भूमिका। इसके अलावा चर्चा होगी बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरोग्य भेंट वार्ता माँ का दूध सर्वोत्तम शिशु आहार विषय पर। जानकारी देंगी डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी और इनसे बातचीत करेंगी दीप्ति शर्मा। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात होगी वृक्षारोपण धरा का भूषण विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्यांकुर पर्यावरण भ्रूण हत्या विषय पर। कवि होंगे शशि अग्रवाल।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कृषि वानिकी की सरकारी योजनाओं के लिए अवसर। इसके अलावा चर्चा होगी बरसात के मौसम में कृषि कार्य। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियों और बचाव। जानकारी देंगी डॉक्टर प्रभा कटियार। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता सुर काव्य में प्रेम और सौंदर्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मधु बिहारी गोस्वामी। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31 पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम News@9 सुना जा सकेगा रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम नौटंकी का समय रहेगा रात्रि 10:00। आज का नौटंकी कार्यक्रम होगा दानवीर राजा निरख पर। आलेख होगा वृजेंद्र सिंह वर्मा का। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज कलाकार होंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद। वादन होगा राग यमन आलाप।

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। नए सपने, हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। हर बिजनेस।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
0: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल

0: नेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज।

वनिता लोक सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का प्यार भरा नमस्कार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ। जल बचाएं जीवन बचाएं, जल बचाएं जीवन बचाएं, पेड़ लगाएं धरती सजाएं, नारी जब संकल्प निभाए हरियाली घर घर मुस्काए। जी हाँ बहनों, कहा जाता है कि जल है तो कल है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। इसी प्रकार पेड़ पौधे हमारी धरती के प्राण हैं। वे हमें शुद्ध वायु, वर्षा, छाया और जीवन देते हैं। यदि जल और वृक्ष सुरक्षित होंगे तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए महिलाओं की भूमिका अहम रही है। महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण की भी संरक्षक हैं। वह घर को संभालते हुए संसाधनों को संतुलित करते हुए उनका उपयोग करती हैं। उसे वह जानती हैं कि आखिर जो संसाधन है हमारे पास उसका उपयोग करना कैसे है। यही गुण जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में भी दिखाई देता है। घर में पानी का सही उपयोग कैसे करें, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए और बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम कैसे विकसित किया जाए, इसकी शुरुआत अक्सर एक माँ से होती है। जब वह बच्चों को नल खुला ना छोड़ने, वर्षा के जल का उपयोग करने और पानी का सम्मान करना सिखाती है तो ये छोटे छोटे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। बहनों, ग्रामीण भारत में आज भी अनेक महिलाएं प्रतिदिन दूर दूर से पानी लाती हैं। इसलिए वे पानी के मूल्य को भली भांति समझती हैं, जानती हैं। वे तालाबों, कुओं और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। वे केवल पौधे लगाती ही नहीं बल्कि उन्हें बच्चों की तरह स्नेह देकर उनकी देखभाल भी करती हैं। और इतिहास गवाह है कि हमारे देश में चिपको आंदोलन महिलाओं की पर्यावरण चेतना का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उत्तराखंड की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि महिलाएं संकल्प ले लें तो प्रकृति की रक्षा का जो बड़ा अभियान है उसको भी वो सफल बना सकती हैं। आज हम सभी यह संकल्प लें कि पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। बहनों, मैं अपनी इस चर्चा को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, आओ मिलकर इसे सफल बनाएं। एक पेड़ मां के नाम लगाकर हरित और सुरक्षित भारत बनाएं।

बहनों, अब करते हैं चर्चा मौसम जो चल रहा है बरसात का, उसी पर। बहनों, बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और खुशियां लेकर आता है, लेकिन यह मौसम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया और पेट संक्रमण जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और सुरक्षित रखते हुए हमें दिखानी होगी। बरसे बादल बरसे प्यार, बरसे बादल बरसे प्यार, रखें बच्चों का खूब ख्याल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, यही है सेहत की ढाल। बहनों, सबसे पहले बच्चों को हमेशा ताजा और घर का बना भोजन दें। बासी या खुले में रखी चीज़ें खाने से बचाएं। पीने के लिए साफ या उबला हुआ पानी ही दें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डलवाएं। अगर बच्चा बारिश में भीग जाए तो उसके गीले कपड़े तुरंत बदल दें और शरीर को अच्छी तरह सुखा दें। लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहने से सर्दी, जुकाम और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है बच्चों में। घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। बच्चों को पूरी बाह के कपड़े पहनाएं, रात में मच्छरदानी का उपयोग करें या मच्छरों से बचाव के सुरक्षित उपाय अपनाएं। अगर बच्चों को तेज़ बुखार, लगातार खांसी, उल्टी, दस्त या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो घरेलू नुस्खों के

0: भरोसे ना रहें, नज़दीकी चिकित्सक या डॉक्टर पर तुरंत संपर्क करें और उनको बच्चों को दिखाएं। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम बच्चों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। बरसात में हम सब मिलकर स्वच्छता अपनाएं, बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बचपन दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चे का पहला टीका और पहला संपूर्ण भोजन होता है। जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध शिशु के लिए आवश्यक पोषण, रोगों से सुरक्षा और स्वस्थ विकास प्रदान करता है। यह न केवल बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लाभदायक है, बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। यह दोनों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, क्या लाभ है, जानते हैं भेंटवार्ता के अंतर्गत। माँ का दूध सर्वोत्तम शिशु आहार, जानकारी दे रही हैं वार्ताकार डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी और भेंट कर रही हैं दीप्ति शर्मा। तो सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना गया है और संपूर्ण आहार भी माना गया है। यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी, इसी विषय पर अधिक जानकारी देंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, आप यह बताइए कि माँ का दूध बच्चे को क्यों पिलाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं?
2: माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, इसके अनगिनत फायदे होते हैं, इसीलिए इसको बच्चों के लिए अमृत भी कहा जाता है। स्तनपान बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तो करता ही है, साथ में इसमें माँ को भी बहुत फायदे होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, तो आप बताइए कि माँ को क्या क्या फायदे होते हैं स्तनपान करवाने से।
2: माँ के फायदे से पहले बच्चों को क्या क्या फायदा होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं।
1: जी,
2: माँ के दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और पानी, हर चीज सही अनुपात में होती है। माँ के दूध शिशु को बहुत आसानी से पच जाता है, इससे उसको दस्त नहीं होते, उल्टी नहीं होती। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही जो दूध निकलता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो एक गाढ़ा, पीला और कम मात्रा में होता है। इस दूध के अनेक फायदे होते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग ये बात समझते हैं कि ये जो गाढ़ा पीला दूध है ये रुका हुआ दूध है और ये खराब है।
1: जी,
2: पर इस दूध के इतने फायदे हैं कि इस दूध को बच्चे का पहला टीकाकरण भी कहा जाता है। इस दूध के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज और IgA होती हैं। ये सारी चीजें बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इससे बच्चे इन्फेक्शन जल्दी कैच नहीं करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये दस्तावर भी होता है। तो जो काली रंग की पॉटी होती है बच्चों के आंतों में, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रम पिलाने से पेट को वो साफ कर देती है, जिससे ये बाहर निकल जाता है। दूसरा, माँ के दूध के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज होती हैं और इतने सारे तत्व होते हैं कि वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध 6 महीने तक लगातार पीते हैं, उन बच्चों में दमे का रोग, एलर्जीज बहुत कम मिलती हैं, उनमें कान का इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है, उनमें दस्त भी कम मिलते हैं, उनको खांसी, जुखाम और जो निमोनिया होता है वो भी कम होता है। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और उनको भर्ती करने की भी नौबत बहुत कम आती है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी IQ लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। उनका जो बुद्धि के विकास के लिए जो तत्वों की ज़रूरत पड़ती है वो सब माँ के दूध में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें डायबिटीज़ भी आगे चल के कम पाई जाती है, उनके अंदर ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत कम मिलता है, उनमें कुछ कुछ कैंसर्स होते हैं जो ब्लड कैंसर्स होते हैं वो भी कम मिलते हैं, जो आंतों की बीमारियां होती हैं वो भी कम मिलती हैं। एक होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम SIDS बोलते हैं, जिसमें अचानक 1 साल तक बच्चे की बिना कारण से मृत्यु हो जाती है
1: जी।
2: वो भी इन बच्चों के अंदर कम होती है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं।

0: तो अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं उनको क्या-क्या फायदे हैं। अब आप डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं तो उससे माँ को क्या फायदे होते हैं?
1: माँ को जो फायदे होते हैं उसमें एक तो जो स्तन का, गर्भाशय का और अंडाशय का जो कैंसर होता है
0: जी
1: उसका खतरा काफी कम हो जाता है। तो जो माएं अपने बच्चों को लगातार 1-1.5 साल तक दूध पिलाती हैं और हर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद दूध पिलाती हैं, तो उनमें इन कैंसर्स की परसेंटेज कम हो जाती है। माँ को वजन भी प्राकृतिक तौर पे कम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। जो डिलीवरी के वक्त जो वेट बढ़ जाता है तो जो माँ स्तनपान कराती हैं उनका वजन जल्दी कम होता है। तीसरा, जो स्तनपान स्त्रियां कराती हैं तो उनका ये एक नेचुरल गर्भ निरोधक तरीका है, क्योंकि दूध पिलाने से एक प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है वो गर्भाशय को जल्दी नॉर्मल साइज लाने में मदद करता है। तो गर्भाशय जल्दी सिकुड़ता है, इससे ब्लीडिंग भी कम होती है और वो नॉर्मल शेप में भी बहुत जल्दी आता है। जो माएँ अब बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनसे उनका एक भावनात्मक रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है, और वो जो भावनात्मक संतुष्टि मिलती है दूध पिलाने से, उससे जो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर जो डिप्रेशन देखा गया है वो भी कम होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चे को दूध पिलाने से माँ को क्या-क्या फायदे हैं, और अब हमें आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे का पेट नहीं भरता है, तो फिर माँ को क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा 24 घंटे में 7 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है तो
0: जी
1: इसका मतलब माँ का दूध पर्याप्त है। कई बारी माँ समझ नहीं पाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और जो वो दूध पिला रही है वो पूरी मात्रा में है कि नहीं, कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है। तो सबसे बड़ा उसके लिए है, अगर बच्चा 7 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है 24 घंटे में, इसका मतलब उसको एक पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, उसका हर महीने वजन नपवा लेना चाहिए। जब टीकाकरण के लिए जाते हैं तब उसका आप वजन नपवाइए, और अगर वजन बढ़ रहा है इसका मतलब माँ का दूध पर्याप्त है। कई बारी माँ अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती है तो भी दूध कम होने लगता है। कभी पानी की मात्रा अगर कम पीती है या लिक्विड्स कम लेती है तो भी दूध कम होता है। तो उसको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसका खान पान और जो उसकी लिक्विड डाइट है वो पूरी हो।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आजकल जो माहौल है तो माहौल के हिसाब से महिलाएं ज़्यादातर कामकाजी होती हैं, तो अपने बच्चों को वह किस तरह से आहार दें जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके और उनका पूरा पोषक तत्व वो बच्चे पा सकें?
1: अक्सर ये देखा गया है कि अगर माँ काम पे जा रही है तो जो घर पे रह जाती हैं दादी नानी, तो वो ऊपर का दूध दे देती हैं, इसमें चाहे वो डिब्बे का दूध हो चाहे वो गाय भैंस का दूध हो। पर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ का दूध आराम से हम उसको निकाल सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे पे तो आराम से रख सकते हैं, और अगर फ्रिज है तो उसको 2 दिन तक रख सकते हैं, और फ्रीज़र में हम उसको 6 महीने तक रख सकते हैं। अगर हम फ्रीज़र से बाहर निकाल रहे हैं दूध को तो उसको गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध अगर हम गर्म करते हैं तो हम उसकी सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह उसकी मर जाती हैं। तो इसीलिए माँ के दूध को गर्म ना करें, और उसको आप आराम से निकाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर 1 दिन से ज़्यादा आपको रखना है और 12 घंटे के अंदर ही आप पिला रहे हैं तो आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। माँ का दूध हाथ से भी निकाल के निकाला जा सकता है, और आजकल पंप्स भी आने लगे हैं जो हर जगह इजीली अवेलेबल हैं, तो वह पंप द्वारा भी निकाल के रख सकते हैं।
0: जी अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि माँ को क्या फायदे हैं, बच्चे को क्या फायदे हैं, और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो किस तरह से अपने बच्चे को संपूर्ण आहार दे सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि माँ दूध नहीं पिला पाती है, तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए माँ को?
1: आम तौर पे तो माँ का दूध हर समय ही फायदा करता है, और बहुत कम ऐसी स्थितियां हैं जब हम बोलते हैं कि माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए। एक तो उसमें अगर माँ को एड्स है तो उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि एड्स में जो

0: दूध होता है उसमें वायरस रहता है, तो एड्स वाली महिला जो एड्स से पीड़ित है उनको मना किया जाता है कि दूध ना पिलाएं। अगर माँ को ट्यूबरक्लोसिस है और वो भी एक्टिव है और उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट ले रही है तो दूध पिला सकती है, पर अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं ले रही तो उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर माँ को कैंसर है और उसको दवाइयाँ चल रही हैं, कीमोथेरेपीज मिल रही हैं, तो माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए। कई बारी देखा गया है कि जो लोग कोकेन और कुछ नशा करते हैं उन लोग को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर उसको कोई माइग्रेन की दवाई खा रही है या पार्किंसोनिज्म की ले रही है या गठिया की कोई दवाई ले रही है तो ऐसी स्थिति में उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। पर अक्सर देखा गया है कि कोई भी नॉर्मल खांसी जुकाम हो गया या बुखार आ गया या मलेरिया आ गया तो बड़े बूढ़े यही बोलते हैं कि अरे माँ का दूध मत पिलाओ, बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। पर यह स्थिति नहीं है। अगर माँ को कोई बीमारी है या कोई खांसी जुकाम है तो उससे लड़ने की एंटीबॉडीज माँ खुद बनाती है और वो दूध के द्वारा बच्चे में जाती है। तो इनफैक्ट अगर फ्लू है या खांसी जुकाम है तो माँ को दूध पिलाना चाहिए जिससे बच्चा भी उस रोग से फाइट कर सकता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस भी है तभी भी माँ को दूध पिलाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी की से जो पीड़ित महिलाएं हैं सब लोग मना कर देते हैं, अरे इसको तो पीलिया है बच्चे को भी हो जाएगा, पर यह धारणा गलत है।
1: तो यह तो बात डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि ऐसा सभी लोग मानते हैं कि माँ बीमार है तो उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए कि बच्चा भी बीमार हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी हमारी श्रोता बहनों के लिए कुछ विशेष?
0: माँ के दूध के इतने अनगिनत फायदे हैं कि हर किसी औरत को अपने बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, और जो स्तनपान कराने से जो मानसिक भावनात्मक और जो शारीरिक विकास होता है वो किसी भी और चीज से हो ही नहीं सकता।
1: तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, अमृत है, चाहे कुछ भी हो माँ को अपना दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, यह अति आवश्यक है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्या क्या फायदे हैं ये आज हमें डॉक्टर ने बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
2: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी भेंट वार्ता क्रम के अंतर्गत वार्ता माँ का दूध सर्वोत्तम शिशु आहार, जानकारी दी डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी ने और उनसे भेंट की दीप्ति शर्मा ने। इसी के साथ अब बहनों रुख करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की ओर और अब बताते हैं अपनी प्यारी बहनों को कुछ घरेलू नुस्खे। बहनों बरसात के इस मौसम में घर में मक्खी मच्छर बहुत अधिक हो जाते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मक्खी मच्छर घर में ना हो तो आप नीम की सूखी पत्तियों या कपूर जला दें तो जो मक्खी और मच्छर हैं वह आपके घर से कोसों दूर रहेंगे। इसी तरह से यदि आप चाहती हैं कि मक्खी मच्छर या अन्य कीट भी दूर रहें तो आप नींबू में 8 से 10 लौंग लगाकर कमरे में रख दें, इससे मक्खी और मच्छर नहीं आते। तो बहनों ये कुछ घरेलू नुस्खे थे जो हमने आपके साथ साझा किए और अब आप दोबारा से रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, इस मधुर गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम को भी समाप्त करने का हो गया है समय। आशा है कि आपको आज का वनिता लोक कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें 0565-2530-135 या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9412-2555-75 पर भी संदेश देकर बता सकती हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन के हर पल का आनंद लेती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपको सुनवा रहे हैं हेमलता की आवाज में। फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से। शब्द रचना रविंद्र जैन की है और इस गीत को धुन से भी रविंद्र जैन ने ही संवारा है।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम निवेदित किया प्रियंका खंडेलवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत

अभी आप सुन रहे थे हेमलता को। फिल्म का नाम था अखियों के झरोके से। इस गीत को लिखा था रविंद्र जैन ने और इस गीत को संगीत से भी संवारा था रविंद्र जैन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में चिराग फिल्म का ये गीत है। शब्द रचना मजरू की है और इस गीत को धुन से संवारा है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे मजरू का लिखा गीत, मदन मोहन का संगीत। फिल्म का नाम था चिराग। आवाजें थीं लता मंगेशकर और साथियों की। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है,

0: जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ चक्कानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को

0: 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
0: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक

0: 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो

0: कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया,
1: लेसन
0: के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है
1: जी,
0: उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार
1: का
0: संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव

0: तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है ये सिखा

0: नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे
1: देते
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी

0: सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-4-4-1-6। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी ये धरा, हमारी ये वसुंधरा जब अपने नैसर्गिक सौंदर्य में होती है, या हम कहें कि जब हम जो भी मनुष्य हैं वो प्रयास करते हैं कि धरती का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहे, और तब हम जो सांसें लेते हैं, तब जो हम महसूस करते हैं, और शायद इस बात को बड़ी आसानी से और सहजता से समझा जा सकता है कि हम जब भी कहीं बच्चों के साथ, कहीं परिवार के साथ घूमने निकलते हैं तो हम पहाड़ों पर जाते हैं, ऐसे वहाँ देवदार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, उनकी खूबसूरती या हरियाली मन को शांत करती है और अपने आप हमारे शरीर को प्रफुल्लित करती है। हमें लगता है कि ये वो जगह है जहाँ हमें खुशी अंदर से महसूस हो रही है। कारण ये है कि वहाँ पर सुंदर आपको पर्यावरण देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ वहाँ की हवा जो है वो तरोताज़ा है, तो सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ये है वो जगह जहाँ पर हम रहना चाहते हैं, ये अपने घर बनाना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें संभव तभी हैं जब हम वृक्षों के महत्व को समझें, प्रकृति के महत्व को समझें। वृक्षारोपण का अर्थ क्या है? पेड़ लगाना, जी हाँ, एक अर्थ इसका ये भी है कि पेड़ लगाना, दूसरा एक संदेश ये भी है कि हमें पेड़ों का संरक्षण भी करना है। पेड़ लगाना या कभी विकास के नाम पर सड़कों के चौड़ीकरण

जब करते हैं सड़कों का, तो जो पुराने पेड़ होते हैं जिनको कई कई वर्ष हो गए, जो उस क्षेत्र की पहचान बन चुके होते हैं कि भाई वो वाला मकान उस वाले पेड़ के पास पड़ता है, वो वाली जगह इधर पड़ती है। तो अक्सर हम जब विकास करते हैं चीज़ें, हमें अपनी सुविधाओं के अनुसार संसाधनों के साथ चाहिए होती हैं, तो कई बार इन पेड़ों का दोहन हो जाता है, प्रकृति का जो महत्व है या ये पेड़ कहीं ना कहीं हमसे बिछड़ जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और प्रकृति का जो हमारा संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन, उसको बनाए रखते हैं। तो कैसे करें? जी हाँ, हम भी तो संकल्प लें कि हम अपने इस पूरे जीवन में, जब इतनी सारी समय समय पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं घर के फर्नीचर के लिए, कहते हैं कि जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक कई जगह लकड़ी हमें काम आती है, तो हमने क्या अपने जीवन में कुछ वृक्ष लगाए हैं? क्या उनको सहेजा है? क्या उनको एक बच्चे की तरह परवरिश दी है? और जिम्मेदारी उठाई इस बात की, नहीं, हम भी कुछ तो पेड़ लगाएंगे, ताकि जब हम उनसे चीज़ें ले रहे हैं तो किसी न किसी तरह हम अपनी प्रकृति के प्रति, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारा ऋण बनता है, उसको हम चुकाएं। तो ये सारी बातें हम गहनता से समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर महत्व की बात करें तो वृक्षारोपण केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है। और इसके मुख्य लाभ, ऑक्सीजन की शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। और इसी क्रम में वर्षा और जलवायु का जो नियंत्रण है, पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं जिससे अच्छी बारिश होती है, और जब बारिश अच्छी होगी तो निश्चित रूप से धरती का जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। मिट्टी का कटाव से मतलब ये कि जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है वो बारिश में बहती नहीं है, उसी में पोषक तत्व है, उसी में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जब हमारे पास हम सहेज के रखते हैं वो होते हैं। और हम कहीं ना कहीं, हमें कहीं जो हमारे कई प्रकार के जो हमारे वन्य जीव हैं, हमारे पक्षी हैं, जंगल में कई प्रकार के ऐसे जीव हैं, हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है, वो जैव की जो विविधता है, उसको भी बचा के रखते हैं ये पेड़। तो बस एक जो पेड़ लगाते हैं ना आप, उससे कई प्रकार के जो लक्ष्य हैं प्रकृति से जुड़े हुए, उनकी पूर्ति हो जाती है। ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते, बस इतना कि कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लें, एक पेड़ लगाएं, उसकी परवरिश करें। सच्ची पुकार जो हम ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं वो इन वृक्षों के माध्यम से हो सकती है।

जी हाँ, और कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जिससे सरोकार हमारे युवाओं का, जिससे सरोकार है हमारे इस देश के भविष्य का, या कह सकते हैं कि इस देश की जो प्रतिभा है, जो उसको भी चहुमुखी अपना विकास उसको मिले, साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो हमारे जब युवाओं के पास में कौशल विकास होगा, हमारे जो शिक्षा के साथ साथ उनको जो रोज़गार के जो अवसर हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह से होंगे कि वो खुद में इनोवेटिव, उनके पास एक सोच होगी, और कह सकते हैं कि जब वो टेक्निकली तेज़ होंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके पास जो आइडियाज़ हैं वो नए नए हमारे जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसमें भी काम आएंगे, और हम सब तरह से ये महसूस करेंगे कि भाई अब रोज़गार जो है वो कुछ आप सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं, निजी क्षेत्र में जा सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि अब आप हाथ से भी अपने आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर जो है इस तरह का कौशल है कि आप खुद भी अपने हाथ के कारीगर हैं या कुछ इस तरह की कला रखते हैं कि लोग खुद आप तक पहुंचेंगे, खुद आप तक एक्सेस करेंगे कि भाई आप ये काम आप ही कर पाते हैं बेहतर, तो हमें आप ही की ज़रूरत है। तो तकनीकी शिक्षा, यानी कि हम जिसको टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, वही हमारी आज चर्चा का विषय भी है, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। जी हाँ, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि वो संरचित ज्ञान जो छात्रों को व्यवहारिक कौशल, विज्ञान, हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, जो भी उनकी एप्लीकेशंस हैं उसमें उनको ट्रेंड करे, उनको प्रशिक्षित करता है। तो ये एक पूरा एक हमारा टेक्निकल एजुकेशन पर इस सारी बात का दारोमदार टिकता है। तो युवाओं में जो रोज़गार के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको, उसमें उनको नवाचार और राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति की जो हम कह सकते हैं जो रीढ़ है वो हमारे युवा हैं, और ये जो टेक्निकल एजुकेशन अगर वो लेते हैं उससे इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो

हम कह सकते हैं कि तकनीकी जो हमारी शिक्षा है उसका महत्व क्या है। जी हाँ, रोजगार का सृजन हो सकता है तकनीकी शिक्षा से। सीधे उद्योगों की जो मांग है भाई, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेंड उनके पास में लोग आएँ, ताकि समय उनको उनको ट्रेनिंग में न गंवाना पड़े और उनको ट्रेंड व्यक्ति मिलेगा, तो वेरी फर्स्ट डे से, पहले ही दिन से उनका जो उत्पादन हो रहा है उसमें वो सहयोग कर पाएंगे। तो तकनीकी शिक्षा से सीधे उद्योगों की जो मांग से जुड़ी होती है, जैसे युवाओं को बेरोज़गारी की समस्या उनमें कम होती है, वो चाहते हैं कुछ अनुभवी लोग जो हैं जिनको हमारे तक पहुँचें। साथ ही साथ औद्योगिक विकास होता है, यानी कि देश के निर्माण उत्पादन में हम आईटी क्षेत्र, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें कुशल तकनीशियों की ज़रूरत पड़ती है। आप कंप्यूटर के क्षेत्र को ही ले लीजिए, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले इंजीनियर भी होते हैं और तो हार्डवेयर इंजीनियर भी होते हैं, जो आपकी पूरी नेटवर्किंग को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता उन लोगों में ज़्यादा होती है जो किसी न कहीं ट्रेंड हैं किसी न किसी काम में, तो आप चाहते हैं कि आप ट्रेंड लोगों से काम कराएं, ताकि आपको आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और चीज़ें आपकी उनका जो मेंटेनेंस है उनका रखरखाव भी बेहतर बना रहे। तो उन्नत तकनीकी ज्ञान से देश में नए उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं तकनीकी विकसित होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। जी हाँ, तो भारत में आप कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा की जो संरचना है वो कई स्तरों पर है, और हम बात करें तो तीन स्तरों पर अगर हम मोटे रूप से इन पर बात कर सकते हैं। ITI और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें माध्यमिक स्तर पर व्यावहारिक कौशल, प्लम्बिंग है, वेल्डिंग है, ऐसे कुछ ट्रेड सिखाए जाते हैं। और पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें तो 10वीं या 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय का डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। साथ ही साथ जब हम इंजीनियरिंग लेवल पर, यानी कि इससे एक पायदान और ऊपर पर बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग या जो हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जिनको कि AICTE से उनको मान्यता प्राप्त होती है, या आप जहाँ पर सुनते होंगे कि बच्चे BTEC कर रहे हैं, MTEC कर रहे हैं, तो उच्च डिग्रियाँ ये प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जब इनका प्लेसमेंट होता है, इनको जब इंटरव्यू ये लोग अपना कंडक्ट करते हैं कॉलेज स्तर पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वहाँ से अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं और इनको ले करके जाती हैं, क्योंकि उनको भी ट्रेंड बंदे चाहिए होते हैं अपने काम के लिए, अपनी कंपनियों में ग्रोथ के लिए। तो लेकिन अभी हम इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उनको हमें सुधारना होगा। जैसे गुणवत्ता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें जो हमारी तकनीकी शिक्षा है उसके जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें अभी उपकरणों की कुछ कमी हो सकती है, तो वहाँ वो चीज़ें पहुँचें। साथ ही साथ जो एक अभियान है नेशनल स्किल डेवलपमेंट है जो अभियान चल रहा है, तो उसमें सरकार कौशल विकास के लिए जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से युवाओं को कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर रही है, उनको कुछ इस तरह से आगे बढ़ावा दे रही है। तो भविष्य की तकनीकी आज के माध्यम से आप कह सकते हैं कि जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आजकल आप काफ़ी नाम सुन रहे होंगे, तो AI के माध्यम से मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसमें काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं। और कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो कर गएंगे वो कर करके उस काम को सीखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस काम को करके अपने हाथ से करके देखा है कि भाई हम ऐसे करते हैं, तो हमारा ये उस काम से जुड़ा हुआ हमारा अनुभव है। तो ये भी है कि जो हमारी तकनीकी शिक्षा है उससे हमारे उसमें उन्नयन आया है, बच्चों ने रुचि ली है, और आज आप देखते होंगे कई जगह आपको बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स खुली हैं। आने वाले समय में जो कुछ समय गुजरा है इसमें, पहले आज से कुछ दशकों पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज आप देखते होंगे कहीं भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कोई आपका प्ले स्टोर से आपको कोई ऐप डाउनलोड करना हो, तो जो हमारे आज के बच्चे हैं वो बहुत टेक्नोक्रेट हो चुके हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें वो सीख चुके हैं और उनको मालूम है कि भाई हमारे पास में कौन सी चीज़ें किस तरह होनी चाहिए। तो कारण यही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन ली हुई है और इसी से उनको मदद मिली है रोज़गार पाने में। तो हम प्रयास करें, हम टेक्निकल एजुकेशन को भी अपने कैरियर के लिए चुन सकते हैं, उसमें आपको आगे काफ़ी मदद मिल सकती है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, बस मन में संकल्प लीजिए और जो राह आपने चुनी है बस उसमें बढ़ते जाइए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। लेते हैं एक व्यवसायिक अंतराल।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब काव्यांकुर क्रम में आज के कवि शशि अग्रवाल। आइए सुनते हैं इनसे काव्य पाठ।
4: आज इस समाज में जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है, जिससे वातावरण दूषित होने के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे में खुद एक पौधा हमसे उसका रोपण और देखभाल करने की आस कर रहा है, और वह हमारे लिए बड़ा होकर क्या क्या करेगा ये भी इस कविता में बता रहा है। इस कविता का नाम है पौधे की चाह। मैं नन्हा सा हूँ एक पौधा, क्या है मेरी जीवन लीला, बीज डाल कर जन्म दो मुझको, जीने का दो मुझे हौसला।

मन मुझको, तो मैं दूंगा साथ तुम्हारा। आज रखोगे ध्यान जो मेरा, कल मैं रखूंगा ध्यान तुम्हारा।

शरण और रखूंगा अस्तित्व तुम्हारा, कर दूंगा स्वच्छ वातावरण और रखूंगा अस्तित्व तुम्हारा, प्यार का भूखा साथ चाहता कुछ पौधों का संग मांगता, मुझको समझो अपना बच्चा दो कुछ साथ दोस्तों का सच्चा, मुझको समझो अपना बच्चा दो कुछ साथ दोस्तों का सच्चा, हरे भरे हम होंगे पौधे भर देंगे फूलों से बगिया, हम जो हंसेंगे बागों में तो आएगी अंगना में खुशियाँ, हम जो हंसेंगे बागों में तो आएगी अंगना में खुशियाँ, कर दूंगा बीमारी मुक्त दूंगा तुमको अनेक औषधि, जीवन का आनंद मैं दूंगा कर दूंगा रोगों से मुक्त, जीवन का आनंद मैं दूंगा कर दूंगा रोगों से मुक्त, सांस रहेगी मुझ में जब तक दूंगा साथ तुम्हारा सच्चा, आँच ना आने दूंगा तुम पर कर दूंगा विषैले गैसों से मुक्त।

तुम साथ हमारा, बनने में एक पेड़ निराला। क्या दोगे तुम साथ हमारा, बनने में एक पेड़ निराला। आज की इस पढ़ी लिखी समाज में भी कुछ लोग इस प्रकार के चोरी छिपे अपराध करते हैं जो कानून की नज़र में ही नहीं बल्कि भगवान के बनाए नियमों में भी पाप के अधिकारी हैं। जैसे भ्रूण हत्या, एक बेटी के गर्भ में होने पर कुछ मजबूरी में और कुछ अपनी मर्जी से इन अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें पुरुषों का महिलाओं पर अधिक दबाव होता है, जिसमें कि एक शिक्षित नारी को अपना कदम उठाना चाहिए और उस एहसास को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए जिसे ये पुरुष समाज कभी महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए इस कविता का नाम है एहसास होता।

एहसास, वरना हर कीमत पर उनको देना चाहिए गर्भ का साथ। सहन शक्ति की बनी क्यों मूरत, बनकर देख श्रेष्ठ तू नारी।

अभी आप सुन रहे थे कवयित्री काव्य अंकुर में, आज की थी शशि अग्रवाल। अभी आपने सुना इनसे काव्य पाठ, और इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधन

0: संसाधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आ रही है आपके बीच ममता रानी, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा कृषि वानिकी की सरकारी योजनाओं के लिए अवसर। जी हाँ, साथ ही आप सुनेंगे बरसात के मौसम में कृषि कार्य, इस पर चर्चा। और डॉक्टर प्रभा कटियार से सुनेंगे आप वार्ता, पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव, आज का ये विषय। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का। श्रोता सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। समय संध्या 6:45 और आज ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05, जिसमें आज डॉक्टर मधुर बिहारी गोस्वामी से आप सुनेंगे ब्रजवार्ता सूर काव्य में प्रेम और सौंदर्य। श्याम सुहानी, जी हाँ, श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम श्याम सुहानी में संध्या 7:31 पर। आप करेंगे व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9492225575, 9412225575। सुनेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में, और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विजेंद्र सिंह वर्मा की लिखी नौटंकी दानवीर राजा नाग।

रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे उस्ताद अमजद अली खान। आप सुनेंगे इनसे सरोद पर बजाया राग यमन। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच ममता रानी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारे राम राम। और भैया देखो अब जो मौसम है ना, अब ना रहेगो केवे ना आगे आवे वारो मौसम बरसा को होएगो। और बरसा को मौसम बड़ा सुहाना हुए और हमारे किसान भैयन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए सभी के लिए। भैया देखो कि जाके हमें बड़ा इंतजार रहे है। तो किसान भैया जब खेतन में बरसा को जल है बाको आप संचय करो है कि नहीं। और बाको संचय कैसे करना भैया, अरे आपको को बाके का जे ड्राम और वो नहीं खरीदने आपको कछु टंकी। अरे आपके पास बहुत बड़े बड़े खेत पड़े हैं पोखर आते हैं उनकी साफ सफाई कर लियो अच्छी तरह से मिलके और उनके चारों तरफ मेड़बंदी पक्की कर लियो जाते बरसा को जल हमें संचित कर लियो आप। और आगे खेती के लिए तो काम आवेगो और बरसा को जल बहुत उपयोगी होते और जाको को भी देखो खर्चा ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना मिलके जैसे कोई सामाजिक कार्य होवे ना गांव में ऐसे आप मिलकर जा कार्य को करो और वासे अपनी खेती कर लेंगे और सिंचाई के लिए बहुत ही बढ़िया रह बेगा उपयोग करेंगे तो। और जई को वो के में जैसे खेतन में देखो मेड़बंदी कर लो जिनकी मेड़बंदी ना है रही तो जब जे वर्षा को जल वा में आपके खेत में रुको रहेगो धीरे धीरे करके जो जल स्तर नीचे गिर रो है पानी को गिरतो जा रो है तो बामे का होगो जमीन में जी समा जाएगा अंदर पहुँचेगो। जई को आजकल पता है का किए एक नाम दियो है हमारे वैज्ञानिक ने का किए हार्वेस्टिंग खेती। अरे भैया जाते भूमि को जो जल स्तर है वो बढ़ जाए है और खेती के लिए बहुत ही उपयोगी जल हमें मिले है। किसान भैया खेती में आपको बुवाई को उखार करना पड़े फसल ठाड़ी अते बामे जे ध्यान रखियो कि पानी की जो निकासी है बाकी व्यवस्था रखियो। बरसात के दिन में अगर आपको को क्यारी कछु बोनो है जैसे धनिया बोनो को भी साग सब्जी बोनी है तो मेड़ बनाए के बुवाई जरूर करियो। सब्जी में जैसे कि फलीन की बुवाई कर लो बामे ज़्यादा मुनाफा होवे देखवारी लागत कम लगे और जब से आंधी अर्रो आ रो खूब तेज में आ जाता है तो

जरूरत ऐसी रेवते कि हमें खेत में खाद देनो है, कीटनाशी को छिड़काव करना हो, तो भैया बात समय आपको करना ना है। आप रुक जाओ, जब मौसम बढ़िया है जाए, शांत है जाए, जब वर्षा चली जाए जानी, तब आप जाकर रिकू करो, क्योंकि बारिश में सब धुल जाएगा, बह जाएगा ना। तो खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में जरूर रखो भैया जी। हमारी बात है बिल्कुल, सवई जी कह रहे हैं, देखो जल स्तर जो गिर रहा है ना बापे, हमें सब आपको कछु ना कछु मदद करनी है, ध्यान रखना है ना, बस यही हमारा आपको सहयोग बन सके ना, जल ही जीवन है। बहुत सही बात है कि जल को हम संचय करें। हम घरन में भी कहें, देखो जितने हमारे घर के डिब्बा हैं बड़े बड़े फेंक देते हैं, और हमारे ड्राम है उनको हम तो छत पे रख दें, देखो अबू हम रखते हैं घर की छत पे, तो बस जल को हम भर लेते हैं, और अपने जो पेड़ पौधा हैं, गमला हैं, धीरे धीरे हम उनको दूसरे तीसरे दिन काऊ बर्तन ते नाप नाप के देते रहते हैं। बस हमारे पेड़ पौधा जो गमला हैं, साग सब्जी हमने लगाए रखी हैं अपनी रसोई के काजे, हमने कचु धनियों पुदीनों ऐसा लगाए रखो है, तो बड़ा उपयोगी जल है भाई, हम भर के रखे हैं, बिल्कुल खराब ना करें हैं, व्यर्थ ना करें हैं, बहुत उपयोगी जल है। हम भी अपने जो सब किसान भैया बहन हैं और भी जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो पानी की बोतल हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी जरूर संचय करें। बालकन को भी ऐसी आदत डालें कि जल को हम संचय करें, व्यर्थ ना करें, कम से कम हम प्रयोग में लाएं और व्यर्थ हो वैसे बचाएं। तो ये हमारे जो जल का स्तर गिर रहा है, वह में जरूरी कछु ना कछु आपकी मदद होगी, और जल स्तर अवश्य ही हमारो ऊपर आवेगा। तो भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं ना जैसे वर्षा को, और हम और है हमारे श्यामा श्याम और हमारी श्यामा जू, हम उनकी बाट तके हैं, बाट तकूं तेरी श्याम, ब्रज बिहारी अनंत को गायो भयो सुने हैं ये लोकगीत।

0: सावधानी रखनी पड़े है और जाके काज हमें बचाव जरूरी करना पड़े। तो बचाव हम कैसे करें, जाके काज हमें कहाँ करनो है भैया? कछु नाय करनो, बस रेडियो के पास जो विशेषज्ञ जानकारी दे रही है ना हमारी बहना, बाकू ध्यान ते सुन लीजो और अपने पशु ने बढ़िया रहेंगे आपके पशु। तो अब कहा बताऊंगी वे का विषय है, वो विषय है पशुअन में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव उनको विषय तो है। और इनकी जानकारी दई वही है डॉक्टर प्रभा कटियार ने, जानकारी दई है विशेषज्ञ, सुनो भैया।
1: पशुओं में बरसात की बीमारियां एवं उनका बचाव के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ पशुपालन का भी मिश्रित खेती में तथा आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी स्थिति में पशुओं की देखभाल व चिकित्सा अति आवश्यक हो जाती है। यदि पशुओं की देखभाल, टीकाकरण व चिकित्सा समय से नहीं की जाती है तो पशुधन की हानि अवश्यंभावी है, जिससे पशुपालक व कृषक को आर्थिक रूप से काफ़ी हानि होती है। प्रायः देखने में आता है कि बरसात के मौसम में पशुओं में अधिक बीमारियां होती हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि इस समय तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, नमी हो जाती है और जो वातावरण में होती है जो जीवाणुओं के पनपने में सहयोग करते हैं, और यदि समय से इनकी रोकथाम व उपचार नहीं किया जाता तो यह बीमारी एक महामारी का रूप ले लेती है और पशुपालक को भारी आर्थिक क्षति होती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पशुपालकों को समय से पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार कराना चाहिए। बरसात में होने वाली बीमारियां जिनमें गलघोंटू सबसे प्रमुख है, जिसे अंग्रेजी भाषा में HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है। दूसरा लंगड़िया बुखार होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में BQ या ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, और खुरपका एवं मुँहपका जिसे FMD फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है प्रमुख रूप से होती हैं। इसके साथ ही बरसात में बुखार व अन्य बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जैसे सर्रा जिसको ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, बबेसियसिस, तिल्ली बुखार जिसे अंग्रेजी भाषा में एंथ्रेक्स कहा जाता है। बरसात की बीमारियों में गलघोंटू एक खतरनाक रोग है जो पास्चुरेला मल्टूसिडा नामक जीवाणु द्वारा होती है, जो बरसात में महामारी का रूप ले लेता है। इस रोग में पशु को मुख्य रूप से बहुत तेज बुखार आता है जो लगभग 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, मुंह से लार डालने लगता है और सांस की गति तेज होने लगती है, जो बीमारी के बढ़ने के साथ साथ सांस लेने पर घर घर की आवाज गले से आनी शुरू हो जाती है, गले में सूजन आनी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो पशु जीभ बाहर निकालकर सांस लेते हैं एवं घर घर की आवाज बढ़ती चली जाती है एवं अंत में समय पर उचित उपचार न मिलने की दशा में पशु की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसकी शुरुआत व मृत्यु में अधिकतम 24 घंटे का समय ही लगता है। यदि बीमारी की शुरुआत में ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए एवं क्यूरेडेक्स 10 ml मांस में 3 दिन तथा सल्फर ड्रग 100 ml खून की नस में सुबह शाम देनी चाहिए। साथ ही बुखार कम करने की दवा जो मेलोनेक्स प्लस नाम से आती है उसको 20 ml मांस में लगानी चाहिए। यदि तुरंत उपचार ना किया गया तो पशु की मृत्यु निश्चित है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बरसात से लगभग 15-20 दिन पहले गलघोंटू के टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए जो पशुपालन विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं, जो प्रमुख रूप से HS वैक्सीन, HS ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, ब्रॉथ वैक्सीन के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं। बरसात के पूर्व टीके लगाने से गलघोंटू बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता या बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे टीकाकरण न लगाने से यह छुआछूत का रोग पशुओं में महामारी का रूप ले लेता है एवं पशुपालक की भयंकर पशुधन हानि होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रोग ग्रसित पशु को अलग रखें, उसका चारा पानी अलग रहना चाहिए और हाथ धोकर ही स्वस्थ पशु को चारा पानी करना चाहिए। इसी बरसात की बीमारियों के क्रम में एक लंगड़िया बुखार जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह क्लॉस्ट्रीडियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में जब तेज उमस वाली गर्मी होती है और नमी बहुत होती है तब पशु को अचानक तेज बुखार आने लगता है और पिछले पैरों से लंगड़ाना शुरू कर देता है। पैरों

तो भैया देखो, अब वर्षा की बात हम आपते कर ही रहे हते, अब खेती की बात है गई, और हमारा जो पशुधन है ना, खेती की रीढ़ है। बाको हमें बरसात के मौसम से पहले कछु कार्य करने होते हैं, जाते उनको वो बीमारी ना लगे, वो तो आप समझ गए होंगे, है ना।

की सूजन बढ़ती जाती है और जब उसी सूजन पर हाथ से दबाते हैं तो एक पुचुर पुचुर की आवाज़, जैसे गुब्बारे में पानी भर देते हैं उसको दबाने पर जो आवाज़ महसूस होती है वो आवाज़ सुनाई देती है। जब तेज़ धार वाले औजार से उस स्थान पर चीरा लगाया जाता है तो वहाँ काला सड़ा हुआ पदार्थ एवं मांस बाहर आता है, जिसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आती है, उसको लगाने से इस बीमारी से सुरक्षा हो सकती है। अन्य बीमारियों के क्रम में बरसात में खुरपका मुंहपका बीमारी खुरदार पशुओं को भयंकर रूप से संक्रमित करती है। इसे FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी में पशु मुंह से लार डालता है, मुंह व खुर में छाले पड़ जाते हैं जिनसे चारा खाने में और चलने फिरने में तकलीफ होती है। चारा न खाने पाने से दूध की मात्रा कम होने लगती है और पशु को हरा मुलायम चारा खिलाना चाहिए। यह एक छुआछूत की बीमारी है जिससे यह तुरंत ही स्वस्थ पशुओं में फैल जाता है, इसलिए उस पशु का रखरखाव और चारा पानी बिल्कुल अलग करना चाहिए। पशु को मुलायम चारा दें जिससे उसको चबाने से उसके जो छाले हैं मुंह में वो घाव का रूप ना लें, और वरना मुंह में घाव बन जाएंगे। उन घाव को बचाने के लिए उसमें गुड़ का शीरा, उसमें बोरिक पाउडर का लेप बना करके उसका मुंह में पूरे में लेप लगा दें, मसूड़ों, गले, गाल में अंदर की तरफ और जीभ पर पूरा पोत दें। साथ ही एंटीबायोटिक जो वो आती है पेनिसिलिन के नाम से, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एंटीसेप्टिक जो दवाई है उससे उसके घावों को साफ करें जो छाले हैं, और साथ में उसके नीम के पत्ते उनको उबाल लें, उसके गुनगुना करके ठंडा कर लें, उस पानी से उन छालों को धोएं जो खुर के छाले हैं, अन्यथा वो गल करके खुर बाहर आ जाएंगे और पशु चलने योग्य नहीं रह जाएगा। इस बीमारी के बचाव के लिए खुरों को लाल दवा से धोना चाहिए। लाल दवा का एक पानी में घोल बना लें, उसके बाद मुंह के छालों के लिए जो मैंने बताया गुड़ के शीरे में बोरिक पाउडर का लेप बना लें, उससे उसको लगाएं। साथ में नीम के पत्तों का उपयोग मुंह में अंदर ना करें, सिर्फ खुरों पर करना चाहिए, और उचित एंटीबायोटिक लगवाएं। घाव के जो ना बढ़ें, मुंह के जो घाव ना बढ़ें और वो चबाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए एक हरा मुलायम चारा अवश्य खिलाएं। और रोकथाम व बचाव के लिए इस बीमारी से बरसात से पहले खुरपका व मुंह पका का टीका उसको अवश्य लगवा लें। इस बीमारी से बचाव के लिए कई प्रकार के टीके बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे FMD रक्षा, FMD बायोमेट वैक्सीन, FMD MDD वैक्सीन जो रक्षा वैक्सीन आती है, ये आदि लगवाने से उसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी जिससे पशु में खुरपका मुंहपका की बीमारी नहीं फैलेगी। ये पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक 6 माह में टीकाकरण किया जाता है, अतः इस टीकाकरण की सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं और पशु को खुरपका मुंहपका के रोग से बचाएं। बरसात में ही एक तिल्ली बुखार, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंथ्रेक्स कहते हैं, वो भी होता है, जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस बीमारी में तेज बुखार आता है, उसके साथ ही पशु खाना छोड़ देता है, और जब पशु की मृत्यु होती है तब उसके सभी प्राकृतिक द्वारों से बिना थक्का वाला खून आने लगता है, बहने लगता है। इस पशु को मरने के बाद कभी भी खुली हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के जीवाणु आक्सीकृत होते हैं, जिससे खुली हवा में इनकी बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है और वो चारों तरफ फैलने लगते हैं। इसमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक लगाने से पशु की सुरक्षा होती है, इस बीमारी से रोकथाम में मदद मिलती है। इन्हीं बीमारियों के क्रम में बरसात में सर्रा तथा बबेसियोसिस नामक बीमारियों का भी प्रकोप होता है। सर्रा को अंग्रेजी भाषा में ट्रिपेनिसोमियसिस भी कहते हैं। यह बीमारी मक्खी मच्छर के काटने से फैलती है, जिसमें पशु को बुखार आने लगता है जो लगातार बना रहता है। इस बीमारी के होने वाले कारक को ट्रिपेनोसोमा कहते हैं, जो अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रजातियों से होते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा इवेंसियाई गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि में होते हैं। ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम ऊंट में होता है। इस बीमारी के लक्षणों में पशु खड़ा सोता सा रहता है और खाना कम कर देता है, हल्का बुखार लगातार बना रहता है, बीमारी बढ़ने की दशा में दिमाग में असंतुलन

0: उत्तेजना जैसे लक्षण भी आते हैं। घोड़ा गधा आदि में पैरों में सूजन भी आ जाती है। इस दशा में नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर उचित एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन के नाम से आती है और बेरिनिल से उपचार कराना चाहिए, इससे उसकी सुरक्षा होगी और समय पर न उपचार होने से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ये उसके खून के में जो परजीवी होता है वो खून में जा करके उसको इफेक्ट करता है। और बरसात के मौसम में गड्ढों, पोखरों, इनमें सब जगह रुका हुआ पानी रहता है जिसमें परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही हर जगह देखने को मिल जाता है। उनके किनारे किनारे हरी घास हो जाती है जिनमें परजीवियों के अंडे रहते हैं। उनको जब जानवर चरने जाते हैं तो चरने के साथ ही उनके खाने के साथ ही पेट में चले जाते हैं। उनका पानी जो पीते हैं वो उनके उनमें अंडे जो होते हैं वो पेट में चले जाते हैं और शरीर के तापक्रम पर वे शीघ्र ही फूट कर कृमि बन जाते हैं, जिनसे एस्केरियसिस, फेसियोलिसिस नामक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे कृमि शरीर से पोषक तत्व चूसते रहते हैं, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं और काफ़ी मात्रा में अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। ये आंतरिक परजीवी पशु को कमज़ोर बना देते हैं क्योंकि वो उनके शरीर का सारा पोषक तत्व चूस लेते हैं और पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। यदि बीमारियां और अन्य बीमारियां उन पर तुरंत ही आक्रमण कर देती हैं, इसलिए एल्बेंडाजॉल की एक बोलस बड़े पशु को बरसात के मौसम में अवश्य ही देनी चाहिए तथा गाभिन पशु को या आश्रय के पशु को फेनबेंडाजॉल की एक गोली अवश्य खिलानी चाहिए, जिससे पशु की आंतरिक परजीवियों से बचाव हो सके। इसके साथ ही पशु को हमेशा ताज़ा पानी पिलाएं और साफ ताज़ा चारा खिलाएं, बासी चारा हमेशा हटा दें। इस समय वह परजीवियों का भी बहुत प्रकोप रहता है।
1: पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव डॉक्टर प्रभा कटियार दे रही थी ये जानकारी। बात बिल्कुल सही है कि अपने पशुओं को हम बीमारी से बचाएं भैया, जाके लिए हमें पहले से तैयार होना होगा और टीकाकरण को ध्यान रखना होगा और पूरी तरह से साफ सफाई रखें पशुशाला की। और जो हमारा पशु अस्वस्थ है बाकू अलग बांधें, हम बाकू अलग रखें स्वस्थ पशुओं से, तो ये बहुत ही बड़ो कार्य, ऐसे सुधार होगा, बचाव होगा और हमारे सगरे पशु है का स्वस्थ रहेंगे। तो भैया एक बात और है कि आपने सुनी होगी कि सरकार कई कई योजना चला रही है हमारे किसान भैया के लिए। कौन से किसान भैया? जो छोटी जोत है, जिन पे कम खेत होते हैं ना, और वो पशु भी रखे हैं संग में, बातें उन्हें लाभ मिलेगो। जैसे सरकार ने चलाई है कृषि वानिकी सरकारी योजना, तो भैया जामे आपको पता है हमारे जो छोटी जोत के किसान भैया हैं उनको बड़ो लाभ मिलेगो। वो पशु पालेंगे ना तो पशु से एक तो उनको गोबर मिले है, झाड़न है, बिछावन है, बासे भैया आप खाद तैयार कर लोगे, वो खाद बहुत ही उपयोगी है, हैं। और बा योजना से आपको ये है कि आपको वृक्ष भी मिले हैं, वृक्षारोपण के लेना कछु खर्च ना करना भैया, आपको लाभ लेनो है बा योजना को। तो और फिर आप जो पशुन से गोबर आपको मिल रहा हो वैसे आप खाद तैयार करो, वाको उत्पादन करो और फिर वैसे आप दाम कमा सको। बाको आप जो है का है जो वृक्षारोपण जो लोग भैया कर रहे हैं आप अपनी खेती में भी डालो और अनकूद हो बासे आप अपनी आजीविका चलाए सको हो। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित जरूर करो भैयाओं, क्योंकि हर मेड़ पे किसान भैयाओं हमारी बात आपसे कहने कीजिए कि हर मेड़ पे खेत होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, हरियाली से खुशहाली आएगी और बीमारी दूर जाएगी, हमारो वातावरण शुद्ध होएगा और हमारो पर्यावरण शुद्ध होएगा, स्वच्छ होएगा, हमें शुद्ध ताजी हवा मिलेगी और जब हवा मिलेगी तो हमारा मन खुश हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, फिर हमें अपनी ब्रज की याद आवे है, कौन की? कान्हा की। कान्हा और उदो, उदो बड़ी ज्ञानी है और जब कान्हा जी द्वारका चले जाए ना तब वो उनको मन मथुरा में रह जाए, तो का कहें उदो से, उधो मैया ए सुनइयो ते।

राम स्वरूप शर्मा को गाए हुए आपने सुनो ये लोकगीत। तो भैया देखो, हम बात कर रहे हैं कि मौसम की, कर रहे हैं ना आपसे बरसात की। तो बरसा को मौसम ऐसो है कि जहाँ में हमारे जो किसान भैया अपनों भी ध्यान रखें, अपनी खेती को रखें और अपने पशुओं को विशेष ध्यान रखें कि उनको छाए में बांधें, और जैसे कि बादल गरज रहो, आंधी तूफान आए रहो, तो उन पशुओं को अपनी पशुशाला में जरूर बांधो भैया, और उनके नीचे सूखो बिछावन रखियो, साफ सफाई रखियो, खान पान बढ़िया, समय से उन्हें खिलइयो, चारागाह में मती भेज, ज्यादा बरसात हो जब, तो ऐसे में पशु अस्वस्थ है जाए, बीमार है जाए हैं। तो हम आपसे यही कहें, कार्य समय के अनुसार करो, समय के अनुसार सारे कार्य करो और चलो, तो यही में सफलता है। तो आज को जो कार्यक्रम है ना ब्रज ग्रामीण, अब बाको भी समय समापन हुए भैया, तो कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

किसान भाई और बहनें अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी ममता रानी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म मैं चुप रहूंगी में, और आइए सुनते हैं संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म परिणय से। आवाज इस गीत में शर्मा बंधुओं की।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में डॉक्टर मधुर बिहारी गोस्वामी से ब्रजवार्ता, सूर्य काव्य में प्रेम और सौंदर्य।
5: महाकवि सूर कृष्ण भक्ति साहित्य के सबते प्रमुख कवि माने जाए हैं। बिनकी रचनान में श्री कृष्ण की बाल एवं किशोर लीलान के रसमय चित्र अंकित भये हैं। प्रेम के विषय में कहा गया है, एक अंगी बिनु कार नहीं, एक रस सदा समान, गनही प्रियही सर्वस्व जो सोई प्रेम समान। निस्वार्थ भावना ते कियो गयो प्रेम ही भगवत प्रेम में परिवर्तित है जाए है। सूर द्वारा वर्णित गोपिन को भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम याही प्रकार को दृष्टिगोचर होए है। गोपी कृष्ण ते एक निष्ठ प्रेम करे हैं। गोपी

कहे हैं कि चाहे कृष्ण लाख ब्याह करें, कुबरी जैसी दस नारियन के संग रहें, किंतु वे हैं तो हमारे ही। ब्याहो लाख धरो दस कुबरी, अंत ही कान हमारे। रासलीला प्रसंग में मुरली ध्वनि को सुनके गोपी कृष्ण ते मिलवे को आतुर है के दौर परे हैं। सूर बिन

परे हैं। सूर बिन की आतुरता को वर्णन या प्रकार करे हैं। जब हरि मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार थके आरज पथ तयत न संक करी। रास में प्रत्येक गोपी को कृष्ण अपने पास ही दीख परे हैं। वे घन दामिनी के समान परस्पर मिल जाए हैं। सूर ने रास को अत्यंत मनोहारी चित्र अंकित कियो है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर सरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी। खंजन मीन मयूर हंसपिक भाई भेद गज गामिनी, को गति गने सूर मोहन संग काम विमोहो कामिनी। रासलीला के मध्य गोपिन के हृदय में अहंकार उत्पन्न है जाए है। अहंकार को नष्ट करवे के लिए कृष्ण अंतर ध्यान है जाए हैं। गोपी व्याकुल है के कुंज कुंज में बिनकू ढूंढवे लगे हैं। एक बन ढूंढी सकल बन ढूंढो कतहु न श्याम लयो। गोपी रोवे लगे बिनके आसुन के संग ही बिनको अहंकार हु बह जाए है। तत्पश्चात कृष्ण पुनः प्रकट है के सुख रास करे हैं। बहुरी श्याम सुख रास गियो, भुज भुज जोरी जुरी ब्रज बाला बैसो ही रस उमगी हियो। रास लीला कृष्ण और गोपिन को सामान्य नृत्य नाय है। यह तो ब्रह्म और जीवात्मा के मिलन को प्रतीक है। रास लीला प्रेम की संयोग अवस्था की चरम परिणति है। प्रेम तर्क ते अतीत है, क्योंकि वह हृदय की वृत्ति है। विष कीट दाख छुआरा तथा अमृत फल को छाण के विष खाए है। चकोर कपूर को त्याग के अंगारन को खाए है। मधुप काठ में तो घर बनाए ले, किंतु कमल के पत्तान में बन जाए है। पतंग दीपक ते लिपट जाए है। प्रेम तो मन माने की बात है। उधो मन माने की बात। दाख छुआरा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात। जो चकोर को देई कपूर को, तज अंगार अघात। मथुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। प्रेम की महत्ता को अंकन करते भाई गोपी कहे हैं, प्रेम प्रेम ते होई प्रेम ते पार ही जाइए। प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ लइए। साचो निहिचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, एके निहिचे प्रेम को जबे मिले गोपाल। कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। जो गोपी जहां ठाड़ी है वहीं ठड़ी रह गई है। बदन सूख गया है, नयन सो जलधारा बह रही है। रही जहां सो तहां रही ठाड़ी, हरि के चलत देखियत ऐसी मनहु चित्र लिखी काढ़ी। वियोग के ताप में तप के गोपिन को प्रेम और हु उज्ज्वल है गयो है। कृष्ण के वियोग में बिनके नैन निस्दिन बरसते रहें, और जिन कुंजन में बिनके संग प्रेम किला करी ही वे कुंज हु आज उन्हें बैरी प्रतीत होए हैं। वे स्वयं को कठोर समझे हैं, क्योंकि हरि बिछुरत फाटो न हियो। भयो कठोर वज्रते भारी, रही है पापी कहा कियो। पिए पिए पुकारवे वारे पपीहा ते, वियोग दग्ध गोपी कह उठे हैं। हम तो मोहन के बिरह जरी हैं, तू कत जारत रे पापी तू पंख पपीहा। पिए पिए कही अधिरात पुकारत। उद्धव जब निर्गुण ब्रह्म को संदेश लेके ब्रज में आमे हैं, तो गोपी अपनी मजबूरी बताए के उद्धव सो कहे हैं। उद्धव मन नाही दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। वे ज्ञान योग को प्रेम योग के सामने हीन माने हैं। कृष्ण को प्रेम तो बिनते काहू प्रकार नाए छूट सके। उनको प्रेम कहो अली अब कैसे करी छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब
अंतर्गतियों लूटत।

0: महाकवि सूर ने अपने काव्य में श्री कृष्ण और राधा रानी के सौंदर्य को अनुपम चित्रण कियो है। कृष्ण अखंड सौंदर्य के सागर हैं, पीत पटते वेष्टित बिनको शरीर, कनक लतांते वेष्टित तमाल तरु की समता करे है। कृष्ण को मुख नव प्रफुल्ल कमल के समान है, जाकी कांति के सामने रवि शशि दोनों छिप जाए हैं। मुख छवि कहा कहों लगी माई, भानु उदय जो कमल प्रकाशित, रवि शशि दो ज्योति छपाई। शोभित अति कुंडल की डोलनी, मकराकृत श्री सरस बनाई, निसदिन रटति सूर के स्वामही, ब्रज बनिता दई है बिसराई। श्री कृष्ण की अलकन की छवि को गान अलिगुन करे हैं, खंजन मीन और मृग शावक नैनन की गति को न समझने के कारण लज्जित है गए हैं। अलकन की छवि अलिकुल गावत, खंजन मीन मृगज लज्जित भये, नैनन गति ही न पावत। कमल लयन कृष्ण की सुंदरता को रंग ही ऐसो है कि छिन छिन में बिनके अंगन की छवि और ते और है जाए है। बिनके ऊपर तो कोटि कोटि काम देवन को वारियो जा सके है। बिनकी सुंदरता को वर्णन करवे में गिरा की गति हु पंगु है जाए है। सखीरी सुंदरता को रंग छिन छिन माही परत छवि और है, कमल नैन के अंग श्याम सुभग के ऊपर वारों आली कोटि अनंग, सूरदास कछु कहत न आवे भई गिरा गति पंग। सूर की सौंदर्य चेतना की प्रमुख केंद्र श्री राधा हैं, राधा सहज रूप की राशि हैं, बिनके रोम रोमते माधुरी बरसे है। सूर ने राधा के नक्षिक वर्णन ने बिनके अंग प्रत्यंग की छवि को मनोहारी चित्रण कियो है। कृष्ण वृंदावन चंद्र हैं तो राधा बिनकी निर्मल चांदनी है। नीलांबर में राधा को शरीर ऐसो चमके है जैसे मेघ बटल में दामिनी। राधा के सौंदर्य निरूपण में सूर की दृष्टि बिनके चटकीले वस्त्रन पे हु गई है। बनी ब्रज नारी शोभा भारी, राधा को अंग प्रत्यंग आभूषणन की छविते शोभित है। शशि मुख पे मृग मत को तिलक, कानन में कर्णफूल, नाक में बेसरी, रक्त मुक्ता में लटकन, नैनन में अंजन रेखा, उर में मुक्तमाल, कटि में कनक किंकणी, चरणन में नूपुर, हाथन में कंकन तथा चूड़ीन की शोभा को वर्णन भयो है। सूर सागर के प्रेम रूप में राधा कृष्ण के सौंदर्य ही सर्वप्रमुख आकर्षण है। श्यामा श्याम जब मिलके नाचे हैं तो राधा के त्रिसम ताल लैवे पे भूषण अंगन में झमके हैं। ऐसो प्रतीत होए है कि मानो बिजली चमकी होए। कामदेव हु यह दृश्य देख के थकित है जाए है। सूर कहे हैं, रस समुद्र मानो उछलित भय, सुंदरता की खानी, सूरदास प्रभु रीज थकित भय, कहत न कछु बखानी। या प्रकार कहो जा सके कि सूर के काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य को अनुपम चित्रण भयो है।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम में डॉक्टर मधुर बिहारी गोस्वामी से ब्रजवार्ता, सूर काव्य में प्रेम और सौंदर्य। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जी कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध है और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
0: श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026

0: का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
1: आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है, 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट के अंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
2: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक पैरालंपिक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के काली घाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है।
3: महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता, प्रयागराज ने तो करके दिखाया है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है, रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी।
4: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का काया कल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा

0: किया जा रहा है।
1: तो ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
2: इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण। कहा, विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
5: लकी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम शाम सुहानी में अब से कुछ ही पलों में।

संदेशों के साथ है हमारे श्रोता साथी और लेते हैं पहला संदेश। आप हैं कार्यक्रम में चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने संदेश भेजा। आप जुड़े धरनी करताल जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाल महेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे वसंतराव भोजने पीएस नवानकर। संदेश के साथ में श्रोता साथी भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश पायल जोशी, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी और अंकिता जोशी का ये संदेश। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु और अर्णव आनंद, सत्यम आनंद जुड़े कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में है। सुधीर श्रोता व्हाट्सएप संदेश के साथ में सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण शिनका और इनके परिवारीजन, ये सभी जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं। आप भी जुड़े कार्यक्रम में अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना, पूना जंक्शन, मस्तानपुरा से।

गांव पांढर केवड़ा से हैं अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, अनुषी बुराड़े और धनश्री बुराड़े। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन का संदेश मिला। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगा घर यमकर, प्रमोद और प्रदीप यमकर। गणेश अफगाड़ श्रीरामपुर से अशोक कुमार, रविका, सानू कुमार और अर्चना कुमार का संदेश मिला। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति संजय, ये सभी सुधी श्रोता मैसेज के साथ में। अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर जाउल हक, नागचूर रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, नारायण आगे, कमल आगे, दिव्या आगे है भरवट भोपाल बुलढाणा से। संदेश के साथ में श्रोता साथी जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत और सभी गांव डाकघर निर्माबाद, जिला जींद हरियाणा से सुधी श्रोता है। संदेश के साथ में मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब से, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शुभिस्ता, पलक लोगना और यश। कैरो जिला तारन तरन पंजाब से गुरुदर्शन लाल चरोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप। अगले संदेश के साथ में सुधी श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जवा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के सुधी श्रोता है। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेश, सुषमा परिधि और मायरा। एक और संदेश मिला मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान का, ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, आराम, समस हाशमी परिवार का संदेश। और आप जुड़े कुमकुम सुरलकर, विजय सुरलकर, रतनबाला मोताला महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन और इंदु सेन भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जिन भी श्रोता साथियों का संदेश शामिल हुआ है दोबारा संदेश न भेजें। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। आप जुड़े कार्यक्रम में संतोष के काले, तेजस के काले और लोकेश एस काले, ये सभी संदेश भेजते हैं कार्यक्रम में शेरगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन कार्यक्रम में। और आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत आवाज। इस गीत में लता मंगेशकर की, वर्मा मलिक का गीत संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत को सुनना चाहा था। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। और संदेश के साथ में जुड़े सुधी श्रोता कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा नीलम, ऋतिक, नितिन पलक, करण गीत, निहारिका, हार्दिक और वर्ष भट्टा, ये सभी परिवार जुड़ा कार्यक्रम में। अगले संदेश के साथ में है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। एक और संदेश के साथ में रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला के सुधी श्रोता, भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से गोपाल नई और उमा महेश्वरी ने ये संदेश भेजा है। आप भी जुड़े छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ और नीलोफर। कार्यक्रम में आप जुड़े कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बरिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहार निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे, कुमारी सनिका देठे पाटिल, ये सभी धामणगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से संदेश भेजते हैं। और आप भी जुड़े आदिनाग बाग, अमोल बाग, गुड़िया, कृष्णारी और अशोक देशमुख, बुराला खुर्द महाराष्ट्र से, कुमारगली श्रीरामपुर से जुड़ चुके हैं अशोक दले, सरिता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सनिका, पूनावली पुणे से अजय सोनवाली, करिश्मा, अविका और विशाखा। एक संदेश के साथ में आशा रामेकर, दिलीप, अक्षर रुद्रा, रुचिका रामेकर, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हमारे सुधी श्रोता। एक और संदेश के साथ में जुड़े स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजीत, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। एक और संदेश के साथ में जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल दिशानी, निमित आहूजा। एक और मैसेज हम तक पहुंचा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा और रजत और मयंक भाटिया का। आप जुड़े कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़, नैना जी हाँ, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ से जुड़े हैं, राजस्थान से सुधी श्रोता नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी। आप जुड़े कार्यक्रम में प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप सिंह, दमन, अभिजीत, एको,

और अगले संदेश के साथ मैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, लगान पडरिया छत्तीसगढ़ के हैं, सुधी श्रोता पीरीपट्टी मधुबनी बिहार से, अरविंद कुमार गुड़िया, भव्या निमेश और नैति जुड़े, जागर मुनाणी, सुमैया सुबान, सुमी सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानुबी मुनाणी और बादशाह मुनाणी। जी हाँ, आपने संदेश भेजा मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तलुका पंढरपुर से, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी भी जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले, शेरी बढ़ने से बलदेव और अरुणा दामोदर भी जुड़े कार्यक्रम में, और आप भी जुड़े ब्रज रेडियो श्रोता मित्र मथुरा से, यादना मुस्फार से, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया छठी गरा के, सुधी श्रोता नगला विजयी राया से, नेत्रपाल सिंह चौधरी, महेन सिंह सिहुरा से और खलल सिंह छोकर मथुरा से, राधा सिटी से जुड़े शारदा प्रसाद प्रजापति और खंदौली आगरा से राजू लवानिया। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत, इसे लिया हमने फिल्म बाजार से। आवाजें दे रहे हैं इस गीत को भूपेंद्र सिंह, गीत बशर नवाज का, संगीत खयाम का।

और लेते हैं कार्यक्रम में कुछ और व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती प्रसाद, सोनल, बीबीसिया। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता। गए डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन और राधा नामदेव। एक संदेश के साथ में बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से खंडवा से बेबी शालिया डावर, हलीमा और जिक्रा डावर। पालकरण वर्मा, ज्योति, राजेंद्र वर्मा, प्रहलाद, अंजनी, उमेश, प्रमिला बंछोर जुड़ चुके हैं। पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ये सुधीश्रोता जुड़े कार्यक्रम में। मलियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान, जीवीएम जैन और माँ जैन साहब करके एक सुधीश्रोता जुड़े और आप भी जुड़े। सिद्धार्थ गुंडानी, अर्चना प्रणय से प्रसिद्धि हिरामणि, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। आप खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार का संदेश है। आप जुड़े कार्यक्रम में पप्पू राजा खुशदिल, संगीता महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी, ये सभी चकला बाजार समाना शहर पंजाब से जुड़े। गुजरात गांधी गांव से सुन रहे थे कार्यक्रम को प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। एक संदेश के साथ में प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। कमल बलूजा, मधु बलूजा सागर और सतना एमपी से। उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, मजनू का टीला से ये संदेश हम तक। एक संदेश के साथ में श्रुति श्रोता जुड़े कार्यक्रम में मैसेज के साथ में। आप बोरखेड़ा पीतरमल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, सिद्धार्थ गुंडवानी, अर्चना गुंडवानी, प्रणय प्रसिद्धि हीरामणि का संदेश मिला। और वर्ली मुंबई से हैं नवाज खान, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और आजम खान। और आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में अपने। भारत गोपाल, नई उमा, महेश्वरी, भारत फ्यूचर सिटी से। सादुर शहर राजस्थान से राम कुमार और चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज मिला। खड़क सिंह छौकर, कन्हैयालाल वर्मा, प्रकाश नगर मथुरा के सुधीश श्रोता। आप जुड़े संदेश के साथ में पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सोफियान, अनस, अल्फिया, सरोज चौक अमरावती से। एक मैसेज आपका कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। मैसेज के साथ में विनोदपुरी वीपी, रंजू, अशोक और ये सुशील का भी एक संदेश मिला कार्यक्रम में। कार्यक्रम में जुड़े आप चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल का। मगनपुरा झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाड़ली, बेबी निशा और सभी मित्रगण। सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, दीपिका, गजेंद्र और हिंश कुमार चंदन। राव गोंदली से उषा गोंदली, हर्षदा वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंदली। गंगोला दातागंज जिला बदायूं के सुधीश्रोता हैं इसरत खान, शायरा, रहूब खान, सैफ, ईशान, आजम और अरहान। एक और श्रोता साथी मुदीचक भगलपुर से दिलीप कुमार सोनी। और कार्यक्रम में जुड़े हैं

सुधी श्रोता, आनंद लोक कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा से अशोक जसवत, सूरज पाल चौधरी, महेश फौजदार और भुवनेश प्रकाश गौतम।

और व्हाट्सएप संदेश के साथ में जुड़े सुधीर श्रोता हैं आप, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबिया और अनस। आप जुड़े कार्यक्रम में जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। बबलू ठेकेदार, शेख वजीर और साहिल जोशी भी जुड़े मोतालाब बाजार से। कार्यक्रम में जुड़े

आप करताल जिला रंगारेड्डी से कानगुला गोपाल मेश्री। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अमीन साबरी फरी साबरी को फिल्म सिर्फ तुम में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। और लीजिए सुनिए मीत बर्दस अनजान और साथियों को फिल्म रॉय में।

अभी आप सुन रहे थे कुनिका कपूर मीत मिर्ज़ा अनजान को, फिल्म रॉय में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म 10 से, आवाज़ें के शान की, गीत प्राची का और संगीत विशाल शेखर का।

गीत प्राची का, संगीत विशाल शेखर का। स्वर दे रहे थे गीत को के और शान फिल्म 10 के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए सुने संवेद स्वर में देश गान।

मिष्कान, रात्रि के 8:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। और ये सुनते हैं फिल्म बंदनी से गीत। आज कार्यक्रम एक ही फिल्म से, मैं आज की फिल्म बंदनी।

लता मंगेशकर को सुना आपने फिल्म बंदनी में, और आई सुने आशा भोसले को अगले गीत में।

0: शैलेंद्र के गीत को संगीत दिया सचिन देव वर्मन ने। आइए सुने फिल्म बंदनी से अगला गीत सचिन देव वर्मन के स्वर में।
1: ओरे माझी

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। आज की फिल्म थी बंदनी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी।

0: मंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।

0: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये

शब्द कैफी आज़मी के संगीत गुलाम मोहम्मद का और स्वर से सजाया था इस गीत को लता मंगेशकर ने फिल्म पाकीज़ा के लिए। और आइए सुने सुहाने तराने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ताल से, आवाज़ें अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की।

गीत आनंद बख्शी का, संगीत AR रहमान का। अभी आप सुन रहे थे इस गीत में सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक को। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, UPI, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी

0: सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों के इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
1: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने

0: कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको, एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक, जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए, आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो। उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको, एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ा जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी। हाँ, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है, वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त
0: करोगे,
2: इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं, हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है
1: जी।
3: जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी

0: पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे. तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश.
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी. और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से, अमित उपाध्याय. अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं. मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है. और दूसरी चीज ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं. जी
3: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है. ओटीपी का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है. ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं. आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है. कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो. अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं. ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए. उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है. ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का. तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए.
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा. चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन. विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है.
4: सभी को नमस्कार
1: जी.
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से. सर मेरे दो सवाल हैं. पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा. तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए. दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर. तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी.
0: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ. पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें.
0: फिर से सवाल करेंगे आप.
1: गुड गया, शायद उन्होंने उनका
0: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है. लेकिन 1930 के बारे में कुछ.
0: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ. तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं से पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं. या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है. तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा. ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए. और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है. आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता. बार बार देखने

0: से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी,
0: सर। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम, आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजनाएं हैं?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
5: धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
5: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड, आप इसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में

0: रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
1: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फ़ोन जो होता है बहुत सिंपल फ़ोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फ़ोन से की फीचर फ़ोन से किया है उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फ़ीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फ़ीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फ़ीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
2: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
1: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी।
1: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
2: जी।
1: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से, कि आप कब उनको OTP दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई

0: ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बना कर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो
1: साइबर फ्रॉड
2: 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए, या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे?
3: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
3: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSGtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए विजेंद्र सिंह वर्मा की लिखी नौटंकी दानवीर राजा नृगं।

लीजिए प्रस्तुत है नौटंकी दानवीर राजा नृग। आलेख विजेंद्र सिंह वर्मा का है। प्रस्तुत करता है TN शर्मा।

0: आपने सुनी नौटंकी दानवीर राजा नृग। आलेख विजेंद्र सिंह वर्मा का था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे मदन लाल शर्मा, गणपत लाल, नेम सिंह सिसोदिया और चुन्नी लाल। वादक कलाकार थे रमेश नागर, छिद्दालाल कटारिया और ओम प्रकाश। इस नौटंकी के प्रस्तुतकर्ता थे TN शर्मा।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार उस्ताद अमजद अली खां कलाकार। आप सुनेंगे इनके द्वारा सरोद पर बजाया राग यमन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। अभी आप सुन रहे थे इनके द्वारा सरोद पर बजाया राग यमन। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

0: क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the